एफएम की 101.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 17, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के जून महीने की 7 तारीख, प्रातः के 5:58 होने वाले हैं। आज की सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी चाईबासा है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the Economic Advisory Council discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. The Home Minister also directed an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with a ruthless approach. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar virtually handed over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal under the reconstruction program post-2015 earthquake after meeting with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi. The two leaders jointly launched the linkage between UPI India and National Payments Interface of Nepal for facilitating cross-border personal remittances. Both leaders also witnessed the exchange of a memorandum of understanding between Digital India Bhashini and Kathmandu University for co-creating the national digital infrastructure for a voice-first language translation platform for Nepal. In his opening remarks during the meeting with Mr. Khanal, External Affairs Minister said that India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need.
3: Collaborate closely to maintain security our long and uniquely open border. Our two countries have always stood by each other in times of need. In the wake of the ongoing crisis in West Asia, the Middle East, we have ensured uninterrupted fuel supplies to Nepal. The importance accorded to this relationship by both sides has only recently been demonstrated. We believe that today there is opportunity to decisively shift the trajectory of India-Nepal relations and to realize the full potential of our ties.
2: The National Testing Agency has refuted the claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access or sale of the NEET UG 2026 re-examination question paper. In a social media post, the agency said that such content is the work of organized cheating rackets that prey on the anxiety of students and their families. The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has said that BJP government will undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state, such as Dakshineshwar and Kalighat temples. Speaking at a program in Kolkata, Mr. Adhikari said grand arrangements will be made for the upcoming Shravani Mela at Tarkeshwar. Hitting out at the previous Trinamool Congress administration, the chief minister alleged that West Bengal suffered from acute lack of employment opportunities and systemic corruption over the past 15 years. In the one-off test against Afghanistan, India will resume play at 368-3 in their first innings on day two in New Chandigarh today. Centuries from KL Rahul and captain Shubman Gill, who remains unbeaten on 103, have put the men in blue in a strong position. Sai Sudarshan also contributed 81 before missing out on a maiden test century, while Rishabh Pant remained unbeaten with a brisk half-century. In hockey, Indian men's team has lifted the Under-18 Asia Cup for the third time, thrashing host Japan 4-1 in the final in the Kakamigahara yesterday. In SAF Women's Championship 2026 final, India defeated the defending champions Bangladesh 3-1 to win the title for a record sixth time, played in Madgaon, Goa yesterday. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी चाईबासा है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान, जिसमें आज के कलाकार हैं रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर।

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। इसमें आज हम लेकर आए हैं चंद फिल्मों से भजन।

कार्यक्रम अभिवरण। अब से थोड़ी देर बाद सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। 7 बजे आप सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम जोहार चाईवासा, 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज, 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार, उसके बाद लोक संगीत कार्यक्रम माटी की महक में, 9 बजे अविविधा कार्यक्रम होगा।

9:30 बजे रस रंजन, 10 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, 10:30 बजे से आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम होंगे। सांध्यकालीन सभा में 5 बजे मुख्य समाचार, 5:05 पर आज होगा फौजी भाइयों के लिए जय भारती कार्यक्रम, 5:30 बजे खेती गृहस्थी और 6 बजे मुख्य समाचार।

6:02 पर आज सुनिए हो अखरा, 6:30 सन्मार्ग, 7:00 प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले में आजकल, 7:10 से विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, वंचितों की वरीयता, ये विषय होगी होगा। विशेषज्ञ होंगे सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अवधि होगी 35 की और इसके बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष। इस कार्यक्रम के बाद 8:00 रजनीगंधा कार्यक्रम होगा, 8:45 पर समाचार संध्या, उसके बाद इंग्लिश न्यूज, 9:15 आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, 10:00 महफिल, 10:30 सुरों के रंग, 11:00 हिंदी समाचार, 11:05 पर इंग्लिश न्यूज और आज की सभा संपन्न होगी रात्रि 11:11 पर। तो ये था आज के कार्यक्रमों का विवरण।

सुबह के ठीक 7 बजे हैं और पेशे खिदमत है आज का कार्यक्रम जोहार चाईवासा। इसमें आज मैं आपके साथ हूं SB सिंह। कार्यक्रम का आगाज़ लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों से, फिल्म का नाम है उत्सव।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी गांव बारे हत्तो तथा तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए है
5: नितुम बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुरा में ना आया यापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
6: अन्य नितुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितमई कोड़ा मुनि में उड़ी उड़ी ने बागिया तोड़ के यूं दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तमा दूर रंग गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बको को काको मेल नहीं है
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरेन का अले आया नु तुम कहीं ना मिले आप ही लेता ना
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
9: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

इस देशभक्ति नगमे के बाद ये आ गई आशा भोसले की आवाज़। फिल्म का नाम है उमराव जान।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म तेजाब का ये नगमा अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल से।

शमीन इस नगमे के साथ ही समाप्त हुआ चाहता है आज का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। ये आकाशवाणी चाईबासा है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
5: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी।
6: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में

0: जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
2: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
2: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
5: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
2: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
6: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
2: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
7: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोकसत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वाले

0: इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही सेंट्रल रेडियोलॉजी हब CRH की स्थापना की जाएगी, जिससे राज्य के सरकारी अस्पताल विशेषज्ञ रेडियोलॉजी सेवाओं से जुड़ेंगे। इस व्यवस्था के तहत एक्सरे, सिटी स्कैन और MRI जैसी जांचों की रिपोर्ट विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट केंद्रकृत प्रणाली के माध्यम से तैयार करेंगे, जिससे रिपोर्ट की गुणवत्ता और उपचार की गति में सुधार होगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा कि यह छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह बनी हुई है। उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आहार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने रिम्स 2 विवाद मामले में जन आंदोलन का ऐलान किया है। रांची में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जमीन बचाने के लिए 10 दिन के भीतर लाखों आदिवासी सड़क पर उतरेंगे।
1: जमीन संघर्ष समिति जो पिछले बार आह्वान किया था, इस बार भी आह्वान कर रहा कि यहाँ लाखों की संख्या में आएंगे और आदिवासी विरोधी मूलवासी विरोधी सरकार को एक बड़ा जन आंदोलन को सामना करना पड़ेगा। न्यायालय का दरवाजा भी जाएगा यहाँ का डर कि हम क्या इस रांची अंचल में आदिवासी पैदा होना क्या गुना है।
0: इधर भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व विधायक सीता सोरेन ने नगरी क्षेत्र में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण का विरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों और ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की मांग की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। सिटी SP ललित मीणा ने बताया कि वह किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था।
2: आदित्यपुर का रहने वाला है, ये कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले भी हमारी टीम द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसे पकड़ लिया गया और उसके पास से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा गोली भी उसके पास से प्राप्त हुई है।
0: झारखंड के ऊपर से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरने के कारण राज्य के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक कहीं कहीं आकाश में बादल छाए रहने, तेज हवा चलने, मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। यह मैच कल गोवा के मडगांव में खेला जाएगा। 7 साल बाद भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर ट्रॉफी अपने नाम की। एक रिपोर्ट।
3: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्यसभा चुनाव की बड़ी हलचल की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर के शब्द हैं, राज्यसभा चुनाव झारखंड में रोमांच बढ़ा, हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए राजनीतिक मैदान तैयार। हिंदुस्तान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के झारखंड दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लिखा है, संगठन की मजबूती के दिए मंत्र, मिशन 2000

टेक्नोलॉजी हब, सरकारी अस्पतालों को मिलेंगी विशेषज्ञ सेवाएं। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के मानक पैकिंग साइज लागू किए, पारदर्शिता और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना उद्देश्य। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज से अगले 4 दिनों के लिए आंधी के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, तो माय गॉड पर एक मेल भेजा और रेलवे में जा रहे तो उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागे फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ, उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई इनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

ये आकाशवाणी चाईबासा है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लोक संगीत के कार्यक्रम माटी की महक में आज सुनिए हो लोकगीत। कलाकार हैं बाबूराम सोए और साथी।

माटी की महक। इस दैनिक कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे वो लोकगीत, कलाकार थे बाबूराम सोए और साथी।

पूर्वाह्न के 9 बज रहे हैं और पेश है आज का विविधा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कीजिए स्वीकार SB सिंह का प्यार भरा नमस्कार।

सबसे पहले आज के दिन का महत्व। 7 जून को विश्व स्तर पर और ऐतिहासिक दृष्टि से कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका सबसे प्रमुख पहलू है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 7 जून को हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। और इसका उद्देश्य है सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाना, खाद्य जनित बीमारियों जिसको फूड बॉर्न डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, उससे बचाओ, खेत से लेकर थाली तक सुरक्षा सुनिश्चित करना, सरकारों और लोगों को खाद्य गुणवत्ता के प्रति जिम्मेदार बनाना। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा का आधार है। भारत के संदर्भ में कई महत्व हैं। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में यह दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मिलावट और असुरक्षित भोजन बड़ी समस्या है। रोड किनारे और खुले में बिकने वाले भोजन पर नियंत्रण की ज़रूरत है। कुछ संस्थाएं इस दिन जागरूकता अभियान चलाती हैं। हालांकि 7 जून से जुड़ी कोई एक बड़ी ऐतिहासिक राष्ट्रीय घटना सार्वभौमिक रूप से प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन यह दिन सामाजिक स्वास्थ्य और वैश्विक जिम्मेदारी के कारण विशेष बन गया है। आज का संदेश है स्वस्थ भोजन ही स्वस्थ जीवन की नींव है। कल आकाशवाणी के 90 साल पूरे होंगे, इस पर चंद पंक्तियां सुने। 90 बरस का यह सफर सिर्फ वर्षों की कहानी नहीं, यह आवाजों का इतिहास है, यह भारत की जुबानी है। जब दूर दराज गांवों तक न संचार, तब रेडियो की मधुर धुनें लाती थी दुनिया का समाचार। कभी खेतों में गूंजा संगीत, कभी चौपालों पे चर्चा हुई, कभी कविता ने मन छू लिया, कभी ज्ञान की वर्षा हुई। सीमा पर प्रहरी सुनते रहे, घर आंगन में बच्चे मुस्काए, आकाशवाणी की आवाजों ने अनगिन रिश्ते भी बनवाए। युद्ध हो, उत्सव हो, आपदा हो, हर पल इसका साथ मिला। जन जन तक सच्ची जानकारी का एक विश्वास भरा हाथ मिला। कितने गायक, कितने कवि, कितने स्वर पहचान बने,

कितने सपनों को इस मंच से उड़ने के अरमान मिले। तकनीक बदली, युग बदला, बदले संचार के आयाम, फिर भी आज़ादी की धड़कन में गूंज रहा इसका ही नाम। 90 वर्षों की यह विरासत, गौरव का अनुपम सम्मान। आकाशवाणी, तुम यूं ही रहना जन जन की सच्ची पहचान। स्वरों की यह अमर यात्रा सदियों तक आबाद रहे, भारत की आत्मा की धुन बन तेरा यश अनुवाद रहे। नमन तुम्हें हे आकाशवाणी, 90 वर्षों के गौरव को प्रणाम।

चंद पंक्तियां नज्म के रूप में। ट्रांसमिशन बूथ का सुकून भी अजब होता है, शोर दुनिया का हो भीतर सबब होता है, माइक खामोश सही रूह मगर बोलती है, हर लफ्ज़ जैसे कोई रब होता है, लाल बत्ती के जलते ही बदल जाता है समा, एक आवाज़ का दुनिया से अदब होता है, कांच की उन दीवारों में कितनी यादें हैं, हर कोना बीते लम्हों का नक्शे तब होता है, गीत गज़ल समाचार या कोई पैगाम हो, हर प्रसारण में जनता से रब्त होता है, तन्हाई में वहाँ आकर साथी बन जाती है, दिल का हर शोर वहाँ बेअसब होता है, वक्त गुजर जाता है, ड्यूटी भी पूरी होती है, पर बूथ का सुकून उम्र भर साथ होता है।

0: सामीन, अब आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता जिसका विषय है ऊर्जा संरक्षण। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर अर्पित सुमन।
1: तो कार्यक्रम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको हमारी ओर से नमस्कार जोहार। सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपना परिचय खुद दें।
2: जी धन्यवाद, मैं डॉक्टर अर्पित सुमन टोप्पो सहायक प्राध्यापिका महिला कॉलेज चैबासा से हूँ और मैं सहायक प्राध्यापिका के रूप में वर्ष 2012 से कुल्हान विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ।
1: तो जैसे कि आज हमारे चर्चा का विषय है ऊर्जा संरक्षण, है ना, तो हम चाहेंगे कि आप बताएं ऊर्जा हम किसे कहेंगे।
2: जी, ऊर्जा यदि हम साधारण शब्दों में बात करेंगे तो किसी भी काम के करने की जो क्षमता होती है हम उसे ऊर्जा कहते हैं। वो शक्ति होती है जिसके द्वारा हम किसी काम को कर पाते हैं, वो ऊर्जा होती है। और जैसा आपने मुझसे कहा था कि 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस है, तो प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को भारत में ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और यह दिवस ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा आयोजित किया जाता है जो ऊर्जा संरक्षण के महत्व और देश की उपलब्धियों को उजागर करता है।
1: अब हम चाहेंगे कि ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आप बता दें।
2: हाँ हाँ, ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से हम इसे दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले नवीकरणीय ऊर्जा और उसके बाद अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से मिलती है और लगातार बनी रहती है, जैसे सूर्य की रोशनी से जो हमें ऊर्जा मिलती है जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा वे होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इसे हम जीवाश्म ईंधन के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है हम ये भी कह सकते हैं। तो बेसिकली दो भाग होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और इसके अंतर्गत यदि हम देखेंगे जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को जानते हैं, रासायनिक ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो मनुष्य अपने जीवन में प्रतिदिन प्रति क्षण अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा की मदद से ही अपने दैनिक कार्यों को कर पाता है। तो इस प्रकार है,
1: तो ये जो ऊर्जा है इसका जो हम प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में वो किस ऊर्जा का प्रायः प्रयोग करते हैं।
2: जी बिल्कुल सही बात कही है कि हम दैनिक जीवन में किन किन ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो दैनिक जीवन में हम विद्युत ऊर्जा का प्रयोग बहुत ही साधारण शब्दों में समझ सकते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम अपने घर में पंखे, बल्ब, टीवी, कंप्यूटर और अन्य उपकरण चलाने में करते हैं, घरेलू के विभिन्न कार्यों में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चलाने के लिए करते हैं। हम रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं जिसके अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस और साथ में खाना पकाने वाले जो भी अभियंत्र हैं, ये हैं आपके रासायनिक ऊर्जा के स्रोत। बैटरी जो होती है जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, इस तरीके के जो स्रोत हैं ये हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जी, यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। बेसिकली यदि हम ऊर्जा को देखेंगे ना तो इसे हम विज्ञान के शब्दों में देखेंगे तो ये बहुत बृहत रूप है, लेकिन दैनिक जीवन में बेसिकली हम समझने के लिए कह सकते हैं कि हम नित्य समय, हर समय हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जो बेसिकली मैंने आपको बताया बल्ब है, टीवी है, कंप्यूटर है, खाना बनाने के लिए भी जो इलेक्ट्रॉनिक सभी चीजें आ रही है, सौर ऊर्जा है, अभी सौर ऊर्जा के बारे में भी हम जान रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग करना चाहिए, संरक्षण की बात भी हो रही है, तो ये सब ऊर्जा के प्रकार है जिसका हम उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं।
1: तो मेरे ख्याल से जो भी चीज हम लोग उपयोग करते हैं उसका हम लोग संरक्षण करते हैं, तो क्या ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है।
2: एकदम, ऊर्जा का संरक्षण ही होता है। यदि हम लोग विज्ञान की भाषा में देखेंगे तो ऊर्जा का ही ना नाश होता है ना ही हम उसका उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में हस्तांतरित होता है, तो इसे हम ऊर्जा का संरक्षण ही कहते हैं, ठीक है ना। और हमें ऊर्जा का संरक्षण भी करना चाहिए, जैसे कि अभी हमने कहा कि मुख्य रूप से ऊर्जा के दो भाग होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और जितने उसके बाद की ऊर्जा के बारे में बताया वो उसके और जो है अन्य भाग होते हैं। तो संरक्षण हमें इसलिए भी करना चाहिए, जैसे हम अभी जीवाश्म ईंधन की बात किए, पेट्रोल डीजल की बात किए, तो ये एक सीमित मात्रा में हमारे पास है जो ये हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। और यदि हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि हमें दिक्कत हो सकती है, ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे हम खाना पकाने के लिए कोयले का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये कोयला कब तक हमारे साथ है? ये जीवाश्म ईंधन का एक रूप है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये कोयले समाप्त हो जाएंगे, हम समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, तो संरक्षण करने की आवश्यकता है। उसका अल्टरनेट हम देख सकते हैं, आज सरकार भी ये कहती है कि हमें सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा से भी बहुत सारे ऐसे नए नए आविष्कार हुए हैं कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम भोजन भी कर सकते हैं, मोबाइल को चार्ज करने में कर सकते हैं, या फिर सोलर लैम्प, लालटेन, बिजली से भी बल्ब भी बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से यदि हम संरक्षण कर रहे, एक उसके रूप से दूसरे रूप में हम उसका हस्तांतरण कर रहे हैं, तो ऊर्जा का संरक्षण बहुत जरूरी है। जी,
1: तो इसके जो है इसको संरक्षण हमें करनी चाहिए, पर हम करें कैसे, इसके तरीके होंगे?
2: हाँ जरूर जरूर। जैसे कि मैं यहाँ पे उष्मीय ऊर्जा के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं। तो दैनिक जीवन में होने वाले उष्म ऊर्जा के रूप में हम अपने घर में मुख्य रूप से खाना पकाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए वाटर हीटर में करते हैं। और हम जैसे अभी ठंड का मौसम है तो हम गीजर में पानी गर्म करते हैं, ठीक है, और स्टोव में खाना बनाते हैं। इस तरीके से हम इसका घरेलू उपयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य की

0: प्राकृतिक गर्मी का हम लाभ ले सकते हैं, कृत्रिम हीटिंग जो है वो हम कम करेंगे और जो प्राकृतिक गर्मी है उसका लाभ ले सकते हैं। घर की दीवारों, छत और खिड़कियों पर अच्छी इंसुलेशन लगाएं ताकि गर्मी बाहर ना निकले। शावर लेने के बजाय कम पानी से नहाएं। वाटर हीटर का यदि तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक है तो ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म ना करें ताकि विद्युत ऊर्जा जो है उसकी बचत हो, है ना। और साथ में अनुपयोगी समय में गैस चूल्हा या हीटर बंद रखें और कुशल उपकरणों का प्रयोग करें। इस तरीके से हम उष्मीय ऊर्जा के द्वारा, ये एग्जाम्पल मैंने दिया, अपने दैनिक जीवन में करके उसका संरक्षण कर सकते हैं। बिजली की कम बचत होगी, कम खर्च होगी, बिजली की बचत होगी। जब हम कमरे में नहीं है तो उस कमरे में बल्ब ऑफ कर रखें, फैन ऑफ कर रखें। तो इस तरह से हम छोटे छोटे अपने इन कदमों के द्वारा ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं।
1: इसके अलावा और भी तरीके हैं?
0: हाँ जी,
1: इसके अलावा और भी तरीके हैं?
0: हाँ, इसके अलावा भी और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने तो अभी आपको उसमें ऊर्जा के बारे में बताया, और इसके पहले मैंने आपको बताया था रासायनिक ऊर्जा के बारे में, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस जो रासायनिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। अभी बड़े शहरों में यह देखा गया है कि एक दिन इस तरीके का किसी भी कैंपस में या किसी भी ऑफिस में या किसी भी कॉलेज स्कूल में व्हीकल फ्री डे हम लोग मनाते हैं। इससे प्रदूषण को भी जो होती है वो कमी आती है और साथ साथ में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की भी बचत होती है, ठीक है। इसके अलावा अभी बहुत सारे व्हीकल इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं जिससे थोड़ी सी उसमें भी बचत हो रही है। हालांकि ये भी हमारे इस क्षेत्र में थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी रासायनिक ऊर्जा की बचत हम कर सकते हैं कि बहुत अधिक हम गाड़ियों का प्रयोग ना करें, जब जरूरत हो तभी करें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, ये वातावरण के लिए भी अच्छा है, और हम ये कोशिश करें कि कम से कम ऊर्जा का प्रयोग करें ताकि उसका संरक्षण हो सके, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है।
1: तो सरकार की ओर से ऊर्जा संरक्षण के लिए कोई कदम भी उठाए जा रहे होंगे, इसके बारे में भी अगर आप थोड़ा चर्चा कर सकते।
0: जैसा कि 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ही है कि लोगों में ऊर्जा के कुशल उपयोग की किस तरह से प्रयोग करना है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देता है और अनावश्यक ऊर्जा खपत को कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षण संस्थानों में या फिर अन्य ऑफिसों में भी वर्कशॉप हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, ताकि लोगों को यह जानकारी हो कि किस तरह से हम ऊर्जा का कुशल उपयोग कर सके, सही तरीके से उपयोग कर सके। और जैसे अभी मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में या जलवायु परिवर्तन के बारे में, तो इन सारे ऊर्जा के उपयोग करने से प्रदूषण भी कभी कभी मतलब बढ़ जाते हैं। जैसे हम अभी देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जब गर्मी नहीं पड़नी है तो बहुत पड़ रही है, जब बारिश नहीं होनी है तो बहुत हो रही है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि हम जान रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि हम उसका कुशल उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भी यही है कि कुशल उपयोग करें, और सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो सरकार के द्वारा बनाया गया एक संस्था है जो इस पर कार्य कर रही है, और यह दिवस 2001 के भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के बाद ही लागू हुआ था यह दिवस, यानी कि ये जो ऊर्जा संरक्षण दिवस है, और जो ऊर्जा नीतियों को मजबूत करने पर केंद्रित है, और 2025 में 35वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार इसी दिन विज्ञान भवन नई दिल्ली में वितरित किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी शामिल होंगी। और यह प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो और ऊर्जा का कुशल प्रयोग, और जैसे आपने मुझसे पूछा अभी कि सरकार की ओर से क्या प्रयास कर रही है, तो काफी सारा प्रयास है, कुछ कानूनी व संस्थागत प्रयास है, उद्योग के क्षेत्र में भी प्रयास है, भवन और शहरी क्षेत्र के भी प्रयास है, और जागरूक करने के लिए काफी सारे नवीकरणीय ऊर्जा को प्रयोग करने के लिए कोशिशें की जा रही है। जी,
1: तो हम अंत में चाहेंगे कि आप हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं, आम आदमी हैं, उनको कुछ संदेश दे दें ताकि वो भी ऊर्जा संरक्षण में अपनी सहभागिता निभा
0: जी
1: पाए।
0: बिल्कुल, ये ऊर्जा संरक्षण दिवस सरकार की ओर से एक प्रयास है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा ऊर्जा का संरक्षण किस रूप में करना चाहिए ये एक प्रयास है, लेकिन ये प्रयास हम आम जनता के लिए, हम सभी के लिए है, और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, ऊर्जा के कुशल उपयोग से वाकिफ नहीं होंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो जागरूकता ही सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे प्रयास हमें अवश्य करने चाहिए। यदि हम कमरे में नहीं है तो वहां पे बल्ब ऑफ कर रखे, फैन ऑफ कर रखे, एसी ऑफ कर रखे। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम जनता को भी ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर यह प्रण लेना चाहिए कि हम ऊर्जा के कुशल उपयोग को लेकर के जागरूक हों, क्योंकि हमारे प्रयास के द्वारा ही यह संभव हो पाएगा। सरकार की ओर से प्रयास किए जाएंगे, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का ये प्रयास है कि लोग जागरूक हो, लेकिन जब तक हम जागरूक नहीं होंगे ये नहीं हो पाएगा। और हमें छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए, जैसे हम अपने घरों में बिना किसी कारण के कोई ऐसा ऊर्जा का प्रयोग ना करें कि वो उसका हानि हो, जैसे किसी खाली कमरे में ऐसे बल्ब या पंखा चला करके ना छोड़ दें, जब कोई व्यक्ति है तभी हम उसका प्रयोग करें। एसी का भी वैसा ही प्रयोग करें, हम प्राकृतिक गर्मी का प्रयोग करें, अभी ठंड का मौसम है, कृत्रिम हीटिंग से हम बचें, और इस तरह से छोटे छोटे अपने कदम के द्वारा हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं।
1: तो मैडम, आपसे ऊर्जा संरक्षण के बारे में बातें हुई, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।
0: धन्यवाद आपको भी।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ। झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनमा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नहर में ना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी गांव बारे हत्तो तथा तो घर आई ने हमरे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए है
6: नितुम लो बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा ऐसा करना ऐसा दुख रहा नहीं आया यापा मैं रिया तपा मैं रिया वाह बेटा निका
7: अन्या मतुम दो बुंबई कोड़ा पटन मतुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन मतुम कितमाई कोड़ा मैंने मैं उड़ी उड़ी ने बागिया तोड़ के मैं दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तो मैं दूर रहने गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेरे मिया अलिंग
8: मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरेन का
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है।
9: आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 8 जून संध्या 6:30 पर।

0: इस कार्यक्रम के पुनः प्रसारण को आप सुन सकेंगे 9 जून सुबह के 9 बजे।
1: कार्यक्रम में प्रस्तुति स्वर होगा संगीता शर्मा और सुनीता हांसदा का।
0: लेखन और संकलन संगीता शर्मा और सुनीता हांसदा का।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे राजेश कुमार राय।
0: ये प्रस्तुति होगी आकाशवाणी चाईबासा की।
1: तो सुनना ना भूले आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से।
2: और चलते चलते ये फिल्मी गीत

रस रंजन पेश खिदमत है ये कार्यक्रम। आगाज़ फिल्म स्टार के इस नगमे से, गुलकारा हैं नाजिया हसन।

रूप तेरा मस्ताना। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए इस फिल्म का गाना। कलाकार हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार।

पूर्वाह्न के 10 बज चुके हैं और पेश है फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। इसमें आज सुनिए आनंद बख्शी के लिए चंद गीत। ये पहला गीत, फिल्म का नाम है झील के उस पार।

फिल्म नमक हराम के बाद ये है कार्यक्रम का आखिरी नगमा। फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी चाईवासा है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे अगला प्रसारण आकाशवाणी रांची से।

0: ये आकाशवाणी का राज केंद्र है और अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय स्थानीय कार्यक्रम जोहार रांची। मैं हूँ इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर ज्योत्सना
1: और मैं विनोद।
0: हम दोनों की तरफ से आप सभी श्रोताओं को जोहार
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, अब आ चुका है जून का महीना, क्यों विनोद?
1: बिल्कुल,
0: यह महीना कितना खास है ये तो शायद आप सबों को मालूम ही होगा। जून का महीना अपने साथ मौसम के बदलाव का संदेश लेकर आता है। तेज धूप और गर्मी के बाद अब आसमान में बादलों की आवाजाही पड़ने लगी है। सुबह शाम की ठंडी हवाएं, कभी कभार होने वाली बारिश और मिट्टी की सौंधी खुशबू मानसून के आने का संकेत दे रही है।
1: प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। बारिश की हर बूंद हमें बताती है कि छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पेड़ हमें निस्वार्थ सेवा का संदेश देते हैं और नदियां हमें निरंतर आगे बढ़ने रहने की प्रेरणा देती हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें उम्मीद का दामन कतई नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे गर्मी के बाद बारिश आती है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जी हाँ श्रोताओ, अभी हम जून का महीना, बारिश और मानसून के आगमन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना विनोद जी साथ ही हम अपने श्रोताओं को आज के मौसम की जानकारी भी दे दें।
4: बिल्कुल, अगर मौसम विज्ञान विभाग की बात करें तो अगले सप्ताह की अगर हम बात करें तो रात की नींद आपकी उड़ सकती है और दिन में तो पसीने छूटेंगे ही। मौसम विज्ञान केंद्र का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में गर्मी और बेचैनी काफ़ी बढ़ने वाली है। अगले सप्ताह मौसम में बदलाव होगा और आसमान में बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। दिन में पारा 43 के पार होगा और रात में भी 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच यह तापमान रहेगा। जहाँ तक बात है कि आखिर मौसम में ये परिवर्तन किन कारणों से हो रहा है, तो मौसम विज्ञान विभाग के ही अनुसार हाल ही में हुई बारिश के बाद दक्षिणी दिशा से लगातार नम हवाएं आ रही हैं, जिससे वातावरण में भारी नमी बनी रहेगी। इस नमी के कारण लोगों को वास्तविक तापमान से 4 से 5 डिग्री अधिक गर्मी का एहसास होगा। दरअसल गर्मी के मौसम में नमी बढ़ जाने से हवा अधिक गर्म महसूस होती है और लोग पसीने से तरबतर हो जाते हैं।
5: Let's start the fun.

0: विनोद जी, जब हम इतिहास शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में राजा महाराजा, युद्ध और पुरानी घटनाओं की तस्वीर उभरती है। लेकिन इतिहास केवल इतना ही नहीं है, इतिहास हमें बताता है कि समाज कैसे विकसित हुआ, लोगों ने कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे किया और समय के साथ जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आए।
1: बिल्कुल, आज हम जिन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिन अधिकारों का आनंद ले रहे हैं और जिस समाज में रह रहे हैं, उसके पीछे की भी अगर हम बात करें तो इतिहास की एक लंबी यात्रा छिपी हुई है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, इसके लिए संघर्ष, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है।
0: हमारा जोहार रांची कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो अपने श्रोताओं को इतिहास में घटी घटनाओं की हर दिन की जानकारी देता है। और आज है 7 जून, तो क्यों ना हम अपने श्रोताओं को इतिहास के पन्नों में दर्ज आज की घटनाओं की जानकारी दे दें। विनोद जी,
1: बिल्कुल, आज ही के दिन 1549

0: इस ईस्वी में शेर शाह सूरी ने बक्सर के पास चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था।
1: और 1631 में आज ही के दिन मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल का बुरहानपुर में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय निधन हो गया था, जिनकी याद में ताजमहल बना।
0: और अगर 1893 की बात करें तो आज ही के दिन महात्मा गांधी ने पहली बार सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था।
1: और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज ही के दिन 1955 में अपनी ऐतिहासिक सोवियत संघ की यात्रा शुरू की, जिसे भारत में भिलाई और बोकारो जैसे आधुनिक स्टील प्लांट लगाने का रास्ता साफ हुआ।
0: इतिहास की जानकारियां तो हमने अपने श्रोताओं को दे दी, और अब समय हो चला है एक मधुर गीत अपने श्रोताओं को सुनवाने का।

0: जोहार रांची, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो चलिए अब हम आपको ये जानकारी दे दें कि आज यानी 7 जून को किन प्रसिद्ध हस्तियों का जन्म हुआ। ख्वाजा अहमद अब्बास, जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक थे, इनका जन्म आज के ही दिन 1914 में हुआ। 1974 की बात करें तो आज ही के दिन भारतीय टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का भी जन्म हुआ था और भारत के भाला फेंक पैरा एथलीट सुमित का भी जन्म आज के ही दिन हुआ था।
1: और अमृता राव, जो कि एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1981 में हुआ था। तो चलिए सुनते हैं इनकी फिल्म इश्क विश्क से ये खूबसूरत सा गीत।

0: शतां जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही होगा। तो आइए ये अब हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि हमारे किन प्रसिद्ध हस्तियों ने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। 1954 ईस्वी में आज ही के दिन एलेन ट्यूरिंग, जो कि एक अंग्रेज गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा।
1: और बी डी सत्ती, जो कि फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत की कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, इनका निधन भी 2002 में आज ही के दिन हुआ। भारत के एक नृत्य गुरु नटराज रामकृत ने भी आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा।

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का दिन यानी कि 7 जून को हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में यह दिन इसलिए मनाया जाता है कि भोजन मानव जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन केवल भोजन उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, भोजन का सुरक्षित होना भी उतना ही आवश्यक है। दुनिया भर में हर वर्ष लाखों लोग दूषित और असुरक्षित भोजन के कारण बीमार पड़ते हैं। विशेष रूप से बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर वर्ग इसके प्रभाव से अधिक प्रभावित होते हैं। इसी गंभीर समस्या को देखते हुए खाद्य सुरक्षा को वैश्विक स्तर पर महत्व दिया गया। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा के रूप में मनाने की घोषणा की।
1: और साथ ही आज के दिन विश्व देखभाल दिवस यानी वर्ल्ड केयरिंग डे भी मनाया जाता है, जो कि विश्व स्तर पर एक दूसरे के प्रति स्नेह, दया और देखभाल की भावना को बढ़ावा देता है। बातें तो बहुत हो गई, अब आइए अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं।

0: विनोद जी, गर्मी की छुट्टी शुरू हो चुकी है। एक दो दिन की मौज मस्ती के बाद अब बच्चों के मुंह से यही सुनाई दे रहा है, मम्मा बोर हो रहा हूँ। तो अपने लाडले की बोरियत पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुश हो जाइए और अपने बच्चे से कहिए कुछ नया सोचो, क्योंकि उनकी बोरियत वह समय है जिस वक्त वह बिल्कुल खाली होते हैं। यह वक्त है बहुत कुछ नया करने और सीखने का। यह वह वक्त है जिसमें वह खुद से देखने, सोचने, समझने और निर्णय लेने का हुनर सीख सकते हैं, कुछ नया गढ़ सकते हैं। बोरियत से आत्मनिर्भरता आ सकती है। जब बच्चे अकेले होते हैं तब खुद से अपने लिए रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं ताकि वह अच्छा महसूस कर सकें।
1: यानी इस दौरान वह खुद को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं कि कैसे वह अपने वक्त को प्रबंधित करें और बोरियत के उस वक्त को मनोरंजन से भर दें। इससे वह खुद के लिए छोटे छोटे निर्णय लेना सीख पाते हैं और यही छोटे छोटे निर्णय उन्हें भविष्य के बड़े निर्णयों की नींव रखने में मददगार होते हैं। बोर होना यानी जहन में सवाल का आना कि अब क्या करूं, और यहीं से शुरू होता है किताबी दुनिया से अलग कुछ सीखने का सिलसिला। गर्मी की छुट्टियां क्या हैं? बच्चों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं, पर उन्हें सही मायने में इसका मतलब समझाना जरूरी है। यह वह वक्त होता है जिसमें बच्चे अपनी रफ्तार से जी सकते हैं। खेलना कूदना, दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ सुनना आदि भी सीखते हैं। मोबाइल और स्क्रीन ही मनोरंजन का साधन नहीं है, इससे अलग कई तरीके हैं, जैसे दीवार पर कुछ बनाकर, मिट्टी के कुछ खिलौने बनाकर, या फिर नई नई कहानियाँ गढ़कर। कुछ भी जो उनके दिल में आए वो करें और बनाएं जिससे वो कुछ सीख सकें।

0: श्रोताओं, आज हम एक बहुत ही अलग और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। श्रोताओं, क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर एक दिन पूरी दुनिया में बिजली ही बंद हो जाए तो क्या होगा? जरा सोचिए, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं चलेगा, फ्रिज बंद रहेगा, पंखे और एसी नहीं चलेंगे और रात में पूरा शहर अंधेरे में डूब जाएगा। ना लाइट होगी, ना इंटरनेट, ना टीवी, पूरा जीवन एकदम रुक सा जाएगा।
1: बिजली बंद होने से हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अस्पतालों में इलाज मुश्किल हो जाएगा, ऑफिस और सारे काम रुक जाएंगे, पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है और सबसे बड़ी बात, लोग अपने फोन से दूर हो जाएंगे। यह सिर्फ डराने की बात नहीं है, बल्कि यह हमें एक जरूरी बात भी सिखाती है, हम बिजली पर कितने ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं, हमारी जिंदगी कितनी टेक्नोलॉजी पर टिकी है और हम प्रकृति से कितने दूर हो गए हैं।
0: बिजली हमारे जीवन की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता सही नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसके गुलाम नहीं बनना चाहिए। श्रोताओं, आज हमने एक अलग कल्पना की के जरिए जाना कि अगर बिजली बंद हो जाए तो जीवन कैसा हो सकता है। उम्मीद है कि यह विषय आपको भी यह सोचने पर मजबूर करेगा।

0: श्रोताओं, अब हम बात करेंगे उस सुंदर भूमि की जो अपनी संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं के लिए पूरे देश में जानी जाती है, और वह है हमारा झारखंड। झारखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के घने जंगल, ऊंचे पहाड़, झरने और हरियाली इस राज्य को एक अनोखी पहचान देते हैं।
1: झारखंड को अक्सर प्रकृति की गोद में बसा राज्य कहा जाता है। यहाँ के जंगल और पहाड़ न सिर्फ सुंदर हैं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। झरनों की आवाज, पक्षियों की चहचहाट और हरियाली से भरा वातावरण मन को शांति देता है। यहाँ की प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन और सादगी कितनी जरूरी है।
0: यहाँ के आदिवासी समाज ने अपनी परंपराओं, लोकगीतों और नृत्यों को आज भी जीवित रखा है। छऊ नृत्य, झूमर और कर्मा जैसे लोक नृत्य यहाँ की पहचान है। मांदर की थाप और लोकगीतों की धुन आज भी गांव में उत्साह भर देती है।

0: श्रोताओं, घड़ी की सुई अब हमें इजाज़त नहीं दे रही कि हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकें, तो अब इजाज़त दीजिए मुझे ज्योत्सना
1: और विनोद को। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।
0: जोहार, नमस्कार।
1: नमस्कार।

ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आपकी पसंद, और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर ज्योत्सना का आप सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का सबसे पहला गाना हमने लिया है फिल्म जिंदगी तेरे नाम से। के की आवाज में इस गाने को संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने और रचना है जलीश शेरवानी की। और इस गाने की फरमाइश करने वाले हैं अपर बाजार रांची से नीरज सोनी, ज्योति कुमारी, सीमा सिंह, पिंकी रानी, राजेश, अमित, दीप्ति, सोनी कुमारी और इनके ढेर सारे साथीगण। बरकाकाना रामगढ़ से अमृत सिंह, हरिहर सिंह, पीयूष कुमार, पलक कुमारी, पीहू, दिव्या, तेजस और संगीता कुमारी। तो आइए सुनते हैं आप सबों के पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, अगला गाना राहत फतेह अली खान की आवाज़ में फिल्म कलयुग से है। तर्ज बनाई है फैजल रफ़ी ने और लिखा है साईद कादरी ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं।

कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। तो पेश है आप सबों के पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है कलयुग।

जी केंद्र से। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म सांवरिया से ये गाना, जिसे गाया है शान ने, धुन तैयार किया है मोंटी शर्मा ने और शब्द रचना है समीर अनजान की। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं नई दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, पिंटू दीवाना, सुरेंद्र कुमार सुमन और जगमोहन साहनी, राजा बाजार चौक बहिया आरा से पूनम देवी केशरी, संगीता देवी केशरी, बीना केशरी और प्रतिज्ञा केशरी। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

इस खूबसूरत से गाने के बाद चलिए सुनवाते हैं आपको लकी फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत अदनान सामी और लता मंगेशकर की आवाजों में। धुन बनाई है अदनान सामी ने और रचना है समीर की। ये फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं बेड़ो झारखंड से अनीता तिर्की, सारिका टोप्पो, प्रियंका टोप्पो, अलका टोप्पो और जूली। खूंटी से मीनाक्षी कुमारी, प्रिया कुमारी, सिमी कुमारी, रिंकू, नीति, मीनू, राज, गौरव और पंकज।

इसी प्यारे से गीत के साथ हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए अब अपनी दोस्त ज्योत्सना को। नमस्कार।

0: शब्द नमस्कार दिलों को जोड़ देता है और रिश्तों में भर देता है प्यार और सम्मान। इसी सुंदर भावना के साथ आपकी रेडियो सखी सुभाषिनी आप सभी का स्वागत करती है।
1: यही प्रेम और सम्मान के साथ आपकी एक और सखी लता भी आप सभी बहनों को तहे दिल से स्वागत करती है आप बहनों का। और तो इसी बात पर स्वीकार कीजिए हम दोनों सखियों का प्यार भरा स्नेह दिल नमस्कार।
0: बहनों अक्सर हम पौष्टिक और संतुलित भोजन की बातें करते हैं और ये सही भी है कि भोजन हमारे जीवन का आधार है। भोजन से हमें काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है, क्यों लता?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुभाषिनी, तुमने सही कहा। एक कहावत है कि किसी भी घर का रास्ता उसकी रसोई से होकर गुजरता है ना? लेकिन हमारा मानना है कि उस घर की सेहत का रास्ता भी रसोई से ही तय होता है।
0: बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जो भोजन हमारी थाली तक पहुंचता है क्या वह पूरी तरह से सुरक्षित है? आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि खेत से लेकर रसोई तक पहुंचते पहुंचते भोजन कई तरह के रसायनों, कीटनाशकों और मिलावट से होकर गुजरता है।
1: हाँ सखियो, मुनाफे की होड़ में फसलों पर जहरीले स्प्रे किए जा रहे हैं, गोदामों में अनाज सड़ रहे हैं

0: बाजारों में मिलावटी सामान धड़ल्ले से बिक रहे हैं। यह दूषित भोजन हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, लेकिन हमें जागरूक होना है और उसका समाधान भी ढूंढना है।
1: हाँ, तभी तो हर वर्ष 7 जून यानी आज के ही दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ही है कि हर व्यक्ति तक सुरक्षित और पोषक आहार पहुंचे, यानी खेत से लेकर थाली तक भोजन की यात्रा हर चरण में उसकी शुद्धता और सुरक्षा कायम रहे।
0: यानी समस्या तो है बहनों, लेकिन हमें उसके समाधान तक पहुंचना होगा। पहली कड़ी है किसान, जिन्हें रासायनिक खादों को छोड़कर जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। दूसरी कड़ी में व्यापारी और ट्रांसपोर्टर को भी हम साथ में रख सकते हैं, जिन्हें भोजन को सुरक्षित रखने के लिए भी हमें कोल्ड स्टोरेज और साफ सफाई का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल, सरकार और प्रशासन को भी महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। खाद्य सुरक्षा की कड़ी बहुत ही लंबी है, इसमें हर व्यक्ति की भूमिका है। हम भी अगर जागरूकता के साथ खरीदारी करें, खरीदारी के समय पैकेट पर एक्सपायरी डेट देखें, सामग्री देखें, ये सब देखकर खरीदें ना, तो सुरक्षित भोजन हम घर ला सकते हैं।
0: हाँ, हर जगह सुरक्षित भोजन तब तक संभव नहीं जब तक हम जागरूक नहीं होंगे। असुरक्षित भोजन देश के विकास को पीछे धकेलता है, क्योंकि एक बीमार नागरिक कभी भी मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता।
1: बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है लता।
0: हाँ।
1: अगर हमें समृद्ध, ऊर्जावान, आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें अपनी खाद्य आदतों को सुधारना होगा और शुद्धता को प्राथमिकता देनी होगी।
0: हाँ, वो तो है बिल्कुल बहनों, अगर हम ध्यान देंगे तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है। बहनों, आपको बता दें कि भारत में स्ट्रीट फूड, शादी का खाना और त्योहारों पर बड़े भंडारे आम हैं। ऐसे में मिलावट, बासी खाना और गंदे पानी का खतरा बढ़ जाता है, और ऐसे में भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। इट राइट इंडिया अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण अभियान है।
1: बिल्कुल, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, यह कहावत बताती है कि भोजन का सीधा असर हमारे शरीर और सोच पर पड़ता है। हर साल 7 जून यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें ये याद दिलाता है कि सुरक्षित भोजन सबका अधिकार है और साथ ही हम सबकी जिम्मेदारी भी है।
0: जिम्मेदारी तो है, क्योंकि हमारी एक और जिम्मेदारी बनती है सुभाषिनी, बहनों के प्रति। तो जानकारी हो गई, चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन क्यों ना अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए बहनों के साथ सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: एनआई स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: तो बहनों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां हमें लेकर चलेगी हमारी रेडियो सखी सुभाषिनी।
2: बिल्कुल बहनों, अब हम चलते हैं एक खास जानकारी की ओर। बातचीत करेंगे हम आज के मेहमान से। आज का विषय है स्वस्थ खाना, हमारी सेहत का खजाना। आज की हमारी मेहमान है गुरप्रीत कौर, जो कि एक डाइटिशियन है, और इनसे बातचीत कर रही है हमारी सखी लता।
1: स्वस्थ जीवन का आधार संतुलित और पौष्टिक भोजन है। हमारा शरीर जिस प्रकार एक मशीन की तरह कार्य करता है, उसी प्रकार उसे सही ढंग से चलाने के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है। स्वस्थ भोजन न केवल हमें ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वस्थ खाना वास्तव में हमारी सेहत का सबसे बड़ा खजाना है। आज इसी विषय पर हमसे बात करने जा रही है हमारी आज की खास मेहमान गुरप्रीत कौर, जो क्लिनिकल डाइटिशियन है और लंबे समय से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। गुरप्रीत जी, आपका हमारी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद लता जी, मुझे आकाशवाणी में बुलाने के लिए। आज हम दोनों मिलके थोड़ी रोशनी डालेंगे स्वास्थ्य और बैलेंस डाइट के विषय पे।
1: जी, बहुत खूब। मैम, जैसा कि आज स्वस्थ खाना हमारी सेहत का खजाना विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि स्वस्थ भोजन क्या है और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए खान पान कितना महत्वपूर्ण है।
3: जी जरूर लता जी, आजकल हम सभी अपनी पढ़ाई, नौकरी और परिवार में इतने व्यस्त हैं कि अक्सर अपने खाने पर ध्यान देना भूल जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारी सेहत की शुरुआत हमारी

0: थाली से ही होती है। आज के समय में स्वस्थ भोजन का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि शरीर को सही पोषण देना। अगर आपका खाना आपको एनर्जी दे रहा है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपका वेट मेंटेन रखता है और आपको दिन भर एक्टिव रखता है, तो वहां वह स्वस्थ भोजन है। आजकल लोग फिटनेस, स्किन हेल्थ, हार्मोनल इम्बैलेंस और मेंटल वेलनेस की बात करते हैं। इन सब की शुरुआत अच्छी डाइट से ही होती है।
1: वाह, बहुत खूबसूरत उत्तर दिया मैम आपने। मैम, हमारे दैनिक जीवन में संतुलित आहार का क्या महत्व है?
0: जी, आज की लाइफस्टाइल में सिर्फ कैलोरी गिनना काफी नहीं है, बल्कि न्यूट्रिशन पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। एक बैलेंस डाइट हमें दिन भर एनर्जी देता है, बार बार लगने वाली भूख को नियंत्रण करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपके वेट को संतुलन में रखता है, और डायबिटीज, हार्ट डिजीज, वेट गेन, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन जैसी समस्याओं को भी कम करता है। इसलिए हमारी डाइट में प्रोटीन, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, ये तो वाकई बहुत जरूरी है। अब मैम, जंक फूड और फास्ट फूड के अधिक सेवन से क्या नुकसान हो सकते हैं?
0: इनके काफी नुकसान हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग ज्यादा खा रहे हैं, बल्कि यह है कि लोग ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, पैक्ड स्नैक्स में, इन सब में अधिक नमक, चीनी, मैदा और अनहेल्दी फैट्स होते हैं। इनका रोज या लगातार सेवन करने से वेट गेन, डायबिटीज, फैटी लिवर, हार्ट डिजीज और हार्मोनल इम्बैलेंस का खतरा बढ़ सकता है। बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी का कारण बन सकता है, क्योंकि बच्चे भी बचपन से ही इन चीजों में ज्यादा रुचि रखते हैं। याद रखें कि सुविधा वाला खाना हमेशा सेहत वाला खाना नहीं होता है।
1: वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि सुविधा वाला खाना जो होता है वो सेहत का खाना नहीं होता है, और हमें बिल्कुल इस बात को ध्यान देना चाहिए। मैम, आपसे
0: जी
1: जानना चाहेंगे मैम कि स्वस्थ भोजन में किन-किन पोषण जो पोषक तत्व हमें पोषण जो मिलता है, तो पोषक तत्वों का होना आवश्यक है।
0: जी जी आज की थाली में सिर्फ रोटी सब्जी नहीं, बल्कि संतुलन भी होना चाहिए। हर भोजन में प्रोटीन जैसे दाल, पनीर, दही, अंडे, फाइबर्स होने चाहिए जैसे सब्जियां, फल, सलाद, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए जैसे रोटी, बाजरा, ज्वार, ओट्स। हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए जैसे नट्स एंड सीड्स। और सबसे जरूरी, आप पानी पीना ना भूले। दिन भर में आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना भी बहुत जरूरी है। और सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपनी थाली के आधे हिस्से को सब्जियों से भरे, या सलाद, सब्जी और सलाद से भरे, और बाकी बचे हुए आधे हिस्से को प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरे।
1: वाह, ये तो वाकई बिल्कुल आपने एक संतुलित थाली के बारे में बताया, बहुत ही खूबसूरती से इसका जवाब आपने दिया इस प्रश्न का। मैम मैम, हम यह भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आजकल जीवन शैली बदल रही है, तो बदलती जीवन शैली का खान पान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
0: जी, आज हम पहले की तुलना में ज्यादा बैठे रहते हैं और कम चलते हैं। ऑनलाइन काम, मोबाइल देखना, देर रात तक जागना और बाहर का खाना हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है। इसके कारण वेट गेन, पीसीओडी, डायबिटीज, थायराइड और हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है। अच्छी बात तो यह है कि अगर आप छोटे छोटे चेंजेस जैसे घर का खाना खाना, रोज कम से कम 30 मिनट चलना, प्रॉपर पानी पीना, ये सब अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होने लगेगी।
1: वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर इन तमाम बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे जो जीवन शैली में जो बदलाव आ रहा है उससे हम बहुत हद तक बच सकते हैं। बहुत
0: जी
1: खूबसूरत जवाब जी। मैम, स्वस्थ भोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?
0: जी स्वस्थ भोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, देखिए आज जानकारी की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन जानकारी सही होनी बहुत ज्यादा जरूरत है कि जानकारी जो भी आपको मिल रही है वो सही हो। हमें बच्चों को बचपन से ही सही खाने की आदत सिखानी चाहिए कि कैसे उनको बचपन से ही सही खाना खाना है, क्या उनके लिए अच्छा है क्या नहीं है। घर पर फल और सब्जियों को ज्यादा उपलब्धि देनी चाहिए, ज्यादा फल सब्जियां रखनी चाहिए अपने घर पर। पैकेट वाले खाने को कम खरीदें, या फिर आप जब भी खरीद रहे हैं तो उसका लेबल आपको पढ़ना आना बहुत जरूरी है कि आप हमेशा पैकेट वाले खाने को लेबल देख के ही खरीदें। और एक बहुत जरूरी बात है, जैसे हमने एक बैलेंस प्लेट के बारे में बात किया है, तो आप हमेशा एक प्लेट मेथड जरूर फॉलो करें कि जब भी आप खाना खाने बैठे हैं तो आपके थाली का एक आधा हिस्सा फाइबर्स होना चाहिए जिसमें सलाद और सब्जियां आती हैं, और बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा में एक चौथाई हिस्सा आपकी प्रोटीन से भरा हुआ होना चाहिए जिसमें दाल, अंडे, दूध, दही, ये वाली चीजें आती है, और बाकी बचा हुआ एक चौथाई हिस्सा आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए जिसमें राइस, रोटी, ज्वार, बाजरा, ओट्स, ये वाली चीजें आती हैं। सो ये वाली चीजें हमें अपने डेली रूटीन में जरूर से जरूर इंक्लूड करनी चाहिए।
1: बिल्कुल हमें करनी चाहिए, और यदि हम इन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें लगता है कि स्वस्थ, जो जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर हम अमल होना चाहते हैं, वो हम जरूर हासिल कर सकते हैं। मैम, स्वस्थ
0: जी
1: खाना, जी स्वस्थ खाना हमारी सेहत का खजाना विषय पर आपका हमारी बहनों के लिए क्या संदेश है?
0: मेरा संदेश यह है कि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि डाइट को एक सजा नहीं बल्कि आप अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। और आज की दुनिया में हम सफलता, पैसे और करियर के पीछे भागते हैं, लेकिन असली दौलत आपकी सेहत है। अच्छी सेहत के बिना जीवन की कोई भी उपलब्धि पूरी खुशी नहीं दे सकती आपको। हर दिन छोटे छोटे खाने की आदत हमारे भविष्य का स्वास्थ्य तय करता है, और इसलिए आपकी थाली रंग बिरंगी सब्जियों, फलों, दालों और पौष्टिक भोजन से भरिए। और याद रखिए, स्वास्थ्य कोई खर्च नहीं है बल्कि आपके जीवन का सबसे अच्छा निवेश है। स्वास्थ्य खाइए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करिए। धन्यवाद।
1: वाह, बहुत खूब जवाब मैम। मैम, आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी, हमारी बहनों को इतनी उम्दा जानकारी दी, आप से बातें करके बहुत अच्छा लगा। हमारी बहनें आपको सुन रही हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारी बहनें आपने जो भी तमाम टिप्स दिए हैं, सुझाव दिए हैं, उस पर अमल करेंगी। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी लता।
2: बहनों, आप अभी सुन रही थी भेंट वार्ता, स्वस्थ खाना हमारी सेहत का खजाना। इस विषय पर बातचीत कर रही थी गुरप्रीत कौर, और इनसे बातें कर रही थी लता रानी। अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे लता।
1: बिल्कुल सुभाषनी, तो जैसा कि हमारा एक और फर्ज बनता है बहनों के साथ मनोरंजन की दुनिया में जाने का भी, तो चलो एक बार मनोरंजन की दुनिया की सैर कराएं।

0: इस खूबसूरत गीत के बाद लता थोड़ी सी बातें हम बहनों से कर लेते हैं क्योंकि आज हमारे पास उनकी सेहत से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी है, लेकिन हम बात करेंगे योग के बारे में।
1: बिल्कुल, क्योंकि योग जो है वो हमें निरोग रखता है, तो हमें नियमित योग करना चाहिए। योग करें, निरोग रहें।
0: बहनों, योग जो है ना वो हम सभी जानते हैं एक प्राचीन कला है जो मन और शरीर को जोड़ती है। यह एक व्यायाम है जिसे हम अपने शरीर के तत्वों को संतुलित करके अभ्यास करते हैं। इसके अलावा यह हमें ध्यान लगाने और आराम करने में मदद करता है। इसके अलावा योग हमें अपने शरीर के साथ साथ मन पर भी नियंत्रण रखने में मदद करता है। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, इसमें हर इंसान किसी न किसी तनाव में, चिंता या बीमारी से जूझ रहा है। खराब जीवन शैली के कारण मोटापा बढ़ रहा है, शुगर हो रहे, मधुमेह से पीड़ित हो रहे हैं लोग, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जा रहे हैं, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं ना वो आम हो चुकी हैं।
1: और यदि हम नियमित योग करते हैं तो ये तमाम बीमारियां जो हमें छू भी नहीं सकती, क्योंकि योग करें निरोग यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जीवन की हकीकत है। सूर्य नमस्कार, तड़ासन और भुजांगासन जैसे आसनों से शरीर का लचीलापन और ताकत बढ़ती है। और अगर प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम और भ्रामरी करने से

0: हमारे मस्तिष्क को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे तनाव और गुस्सा, आजकल हमें गुस्सा हर बात पर बहुत जल्दी आती है, चाहे किस भी आयु के वर्ग में हो, तो गुस्सा भी है वो नियंत्रित हमारा योग ही करता है, इससे गुस्सा दूर होता है। और योग को सही मायने में स्वयं और दुनिया के साथ सामंजस्य में रहने का विज्ञान कहा जाता है, यानी केवल हमारे शरीर को फिट रखने के लिए है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को सक्रिय रखने में भी हमारी बहुत बड़ी मदद करता है।
1: और ये अभ्यास शरीर, मन और आत्मा को तो एक साथ जोड़ता ही है, और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार को भी बदलकर हमें खुश, शांत और संतुष्ट रखने में सक्षम बनाता है। यह हमें अधिक सकारात्मक, आशावादी और खुश मिजाज भी बनाता है। योग व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव भी डालता है। इसके अलावा योग हमारे दिमाग को तेज भी करता है और हमारी बुद्धि को बेहतर बनाने में मदद करता है।
0: यानी कि एक योग के कितने फायदे हैं बहनों, वो हम देख ही सकते हैं। और योगासनों का नियमित अभ्यास मन और शरीर दोनों का, दोनों को जो है वो स्वस्थ बनाए रखने के लिए फायदेमंद है। कम उम्र से ही योग की आदत बच्चों में डाले बहनों, ताकि उनकी ये हैबिट एक रूटीन बन जाए। योग बहुत गुणकारी है। नियमित योग रक्त संचार को बढ़ाने के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और शरीर को कई तरह की बीमारियों के जोखिम से बचाता है। इसके अलावा शारीरिक कार्य क्षमता और सहन शक्ति में भी सुधार करने में योग सहायक है। योग के बढ़ते चलन के कारण लोगों को योगाभ्यास से होने वाले फायदों के बारे में तो पता है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि अधिक योग करने से अधिक लाभ होगा।
1: बिल्कुल। तो बहनों, योग करें और निरोग रहें, है ना। और इसी के साथ ही लता, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो बहनों को बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की, और इसी के साथ आपके सखी सुभाषिनी
0: और लता को दीजिए इजाजत। अगले कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत भारती, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अंगिका लोकगीत। कलाकार हैं संगीता स्नेह और साथी।

ये आकाशवाणी का राज केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: प्यारे श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम हमारी बेड़िया में मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब अपने परिवार के साथ खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आप हमारा नंबर लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। हम आज देखते हैं कि लोग, खास तौर पे माता पिता, आजकल एक बहुत ही गंभीर चिंता में होते हैं। जी हाँ, बच्चों को आज्ञाकारी कैसे बनाएं? ज्यादातर माँ बाप बस इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। और आज हम इसी गंभीर विषय पर अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं। और हम धन्यवाद देते हैं गोपी चंद जी का और परमहंस जी का बिहार से, जो हमारा प्रोग्राम लगातार सुनते हैं। आज का ये प्रोग्राम बनाने के लिए हमको उन्होंने ही प्रोत्साहित किया है। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज जी।
1: धन्यवाद प्रियंका, और सारे श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: सर, आज हम एक बहुत ही नाजुक विषय पर बात कर रहे हैं, जो कि हम ज्यादातर देखते हैं एक आम परेशानी बन चुकी है, हमारे बच्चों का रवैया। ज्यादातर बच्चे या तो बहुत गुस्सा करते हैं, या बात ही करना पसंद नहीं करते, या एकदम से अपने बड़ों को पलट कर जवाब दे देते हैं। और सर, कई बार बच्चे अनजाने में या जानबूझकर अपने माँ बाप को लोगों के सामने शर्मिंदा कर देते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप प्रियंका। हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, उनमें धीरे धीरे व्यवहारिक बदलाव भी आते हैं। जैसे बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप से लड़ते झगड़ते हैं, उन्हें पलट कर जवाब देते हैं, उनका आदर नहीं करते। दरअसल जब तक ये बच्चे छोटे होते हैं, तब तक तो सबको प्यारे लगते हैं, पर जब ये बड़े हो जाते हैं, तब ये ऐसा करते हैं तो सबको बुरा लगता है।
0: जी हाँ सर, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, व्यवहारिक बदलाव। हम इसको क्या समझें और क्या और क्यों होते हैं ये व्यवहारिक बदलाव?
1: जी हाँ, व्यवहारिक बदलाव मतलब हमारे व्यवहार में बदलाव का आना। जैसे अभी हमने कहा कि बच्चे पलट कर जवाब देने लगते हैं, या बात करना पसंद नहीं करते, या बातों को नहीं सुनते, कहना नहीं मानते, ये व्यवहारिक बदलाव होते हैं और ये हमें बच्चों में नजर आता है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है उनमें आने वाला हार्मोनल चेंज। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनमें चाहे वो लड़का हो या लड़की, कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं, इसलिए भी ऐसा होता है। और हार्मोनल बदलाव की बात जब हम कर रहे हैं, तो ये एक तरह का द्रव होता है जो बच्चों के अंदर, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उम्र के हिसाब, उनमें उत्पन्न होता है। ये प्राकृतिक दशा है और इस प्राकृतिक रूप से होता है। जब ये बदलाव होने लगता है, बच्चों के अंगों में बदलाव होता है, उसे उनके शारीरिक संरचना जो है उसमें बदलाव आने लगता है। उस बदलाव के कारण हम बच्चों में देखते हैं कि वो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो बातों को टालना सीख जाते हैं, वो बातों को सुनना नहीं पसंद करते, या लोगों की, बड़ों की बातें जो हैं, उन्हें लगता है कि हमें क्यों डांट रहे हैं, ये कि हमें क्यों बोल रहे हैं, और वो उलटकर कभी कभी जवाब भी दे देते हैं।
0: मतलब ये नेचुरल है सर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे बच्चे ऐसे ही रहेंगे, या कोई तरीका ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे सभ्य बन जाएं, या ठीक हो जाएं, या इन चीजों से बाहर आ जाएं, आज्ञाकारी बन जाएं? क्योंकि कारण कोई भी हो सर, माँ बाप का दिल इन बातों से बहुत दुखता है। बच्चे नहीं समझते, पर उनका ये व्यवहार माँ बाप के दिल को बहुत दुखी कर देता है। कितना कुछ करते हैं माँ बाप अपने

0: बच्चों के लिए कितना दुख सहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जब से बच्चा दुनिया में आता है तब से वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीते हैं, पर बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं तो सोचिए कि क्या उनके हृदय में बीतती होगी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने प्रियंका, माँ बाप का दुख तो माँ बाप ही समझते हैं। माँ बाप का दिल इससे दुखता है, माँ बाप को इससे दर्द महसूस होता है अपने बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलाव को देख करके, और वो सोचते हैं कि ऐसा बदलाव क्यों मेरे बच्चे में आ रहा। मैंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी की, जब भी उन्होंने जो कुछ मांगा मैंने उन्हें दिया, फिर ये बदलाव बच्चे में क्यों आ रहा है। और ये सोच सोच कर माँ बाप परेशान होते हैं और वो तमाम तरह की पीड़ाओं से गुजरते हैं। बच्चों में ऐसे बदलावों के कारण ही वो ऐसे हो जाते हैं। हाँ, ये एक जरूर बड़ा कारण है, पर प्रियंका हमारे श्रोताओं एक बहुत बड़ा और कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तब वो कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तक जो हम बातचीत कर रहे थे, हम उन बच्चों की बात कर रहे थे जो 10-12 साल के हो जाते हैं या उससे लेकर के 18-19 साल के बच्चे हैं, उनमें ये बदलाव हम देखते हैं जो हार्मोनल चेंज की वजह से बदलाव आते हैं। उन बदलाव के कारण जो है उनकी प्रतिक्रिया जो होती है अपने पेरेंट्स के प्रति वो बड़ी डिफरेंट होती है, बिल्कुल बदली हुई होती है, और माँ बाप आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तब वो कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या हाथ उठाना, कहना ना मानना, और तब माँ बाप को ये सब बहुत अच्छा लगता है, खुश होते हैं, और बाद में बच्चे बड़े होकर भी यही सब करने लगते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो हमको इन बातों का बचपन से ही ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, बच्चे की पहली पाठशाला माँ की गोद होती है, वहीं से वो सब कुछ सीखता है। इसलिए बच्चों में हम क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को हम क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को में किस तरह के वैल्यूज को जो है हम इम्पार्ट कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, जब बचपन में बच्चे गलती करके आते हैं तो हम उनको उनका पीठ थपथपा देते हैं, वो किसी को मार करके आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम इस तरीके से बच्चों को बढ़ावा देते हैं जब वो छोटे होते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बढ़ने लगते हैं और चूंकि उनको उनके छोटेपन में आपने उनको बढ़ावा दिया होता है और वो उससे प्रोत्साहित होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं हरकतों को वो करते हैं, और तब वो प्रॉब्लम पैदा करता है, वो परिवार में प्रॉब्लम पैदा करता है, वो समाज में प्रॉब्लम पैदा करता है, और एक बहुत ही बड़े दुख का कारण वो हो सकता है।
0: जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बात की। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से हमको उनको ना शब्द का अर्थ समझा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को ना शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। बच्चों को बचपन से आज्ञाकारी बनाने के लिए नहीं शब्द का महत्व पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं होती, और माँ बाप अगर किसी चीज को मना करें तो वो नहीं मानते और जिद करके अपनी बात मनवा लेते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से ये सिखाना चाहिए कि अगर किसी चीज के लिए ना बोला है तो उसका मतलब ना ही होता है, और ऐसे सबसे पहले बच्चा आज्ञा मानना सीखता है। याद रखिए दोस्तों, आप उनके माँ बाप हैं, वो आपके माँ बाप नहीं हैं। आप जैसा सिखाएंगे वो वैसा ही सीखेंगे।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने प्रियंका, बस हमको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और गलती से हम इनमें ही लापरवाह हो जाते हैं। दोस्तों, बस इन कुछ बातों का ध्यान रखकर हम अपने बच्चों को आज्ञाकारी बना सकते हैं, जैसा कि प्रियंका जी आपको बता रही थी। आप एक अपने बच्चों को एक सभ्य बच्चा, अच्छा बच्चा बना सकते हैं। जी हाँ, जैसे बच्चों को सिर्फ प्यार लाड़ ही न करें, बचपन से जब से वो छोटे होते हैं तभी से प्यार के वक्त प्यार और गुस्से और सख्ती के वक्त सख्ती, जब हम ये संतुलन कायम रखते हैं तो सब कुछ आराम से चलने लगता है। यानी जब उन्हें डांटने की जरूरत हो तो डांटिए, जब प्यार करने की जरूरत आप महसूस करते हैं उन्हें प्यार दीजिए आप। तो आपको बैलेंस बना करके चलना होगा, और न ही हर वक्त बच्चे को गुस्सा, डांट से ये सभी नहीं करना है। जी हाँ, ऐसा करने से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि माँ अगर गुस्सा करती है तो पापा बच्चों की साइड ले लेते हैं, और कई बार माँ बाप दोनों अगर बच्चे को गुस्सा करते हैं तो बच्चे के दादा दादी या बुआ या चाचा, मतलब परिवार का कोई ना कोई बच्चे

0: को बचाने की कोशिश करता है, और बस यही एक बड़ा कारण बन जाता है बच्चों के असभ्य होने का। इन बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब माँ डांट रही है तो बच्चे को, पिता को या तो खामोश रहना चाहिए या फिर माँ के साथ मिल करके बच्चे को समझाना चाहिए।
1: जी हाँ सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। बस हम ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और ये गलतियां बाद में हमको भारी पड़ जाती हैं। पर दोस्तों, ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो हम माता-पिता को समझने की जरूरत है, पर कुछ बातें बच्चों को भी समझने की जरूरत है। दोस्तों, एक बार एक ईशान नाम का लड़का था। उसके माता-पिता उसको बहुत प्यार करते थे, पर वो समझता था कि बस वो ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। ना अपने माता पिता की इज्जत करता और ना उनका कहना मानता। उसके माता पिता भी जो भी उसको उपहार लाके देते थे वो सब कुछ व्यर्थ समझता था, किसी भी चीज की वो वैल्यू नहीं करता था। तो दोस्तों, उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ वही किया जो उसके माँ बाप ने उसको करने से मना किया था। जी हाँ, यहाँ तक कि ईशान ने विवाह भी वही किया जहाँ उसके माँ बाप ने उसे मना किया था, क्योंकि उसके अंदर जिद थी। पर दोस्तों, एक बार जिंदगी में वो वक्त आया जब वो पिता बना और वक्त ने करवट ली। जी हाँ, कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। ईशान की जिंदगी में वक्त आया कि जो उसने अपने माता पिता के साथ किया था अब उसके साथ होने लगा था। अब ईशान को उसके बच्चों का रहन सहन, उनकी बातें, उनके शब्द और उनका उसको पलट कर जवाब देना, ये सब तीर की तरह चुभने लगा। उसको याद आने लगा कि कैसे उसने अपने माँ बाप के साथ व्यवहार किया था। दोस्तों, हम बच्चों को भी यही चीजें सीखना जरूरी है कि हम कितना भी पढ़ लिख लें, हम कितना भी समझदार हो जाएं, कितना भी ज्ञान हमको हो, हम अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। जी हाँ, याद रखिए, हम अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमको जन्म दिया है। हम उनको बेइज्जत करके, उनको पलट कर जवाब देकर या उनका कहना ना माने तो दोस्तों, याद रखिए कि हमने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया है। हम सफल होकर भी जिंदगी में असफल हो गए हैं, ये समझ लीजिए। दोस्तों, जी हाँ, कई बार हम उम्र के ऐसे पड़ाव में होते हैं कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। मैं बात कर रही हूँ सारे बच्चों से जो हमें सुन रहे हैं। हम जिंदगी के ऐसे पड़ाव में होते हैं कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और हम भावनाओं के जाल में उलझे होते हैं। हाँ, उलझने होती हैं, तकलीफें होती हैं, गुस्सा होता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपने माता पिता पे सारा गुस्सा निकाल दें। जी हाँ, एक बार माँ बाप को बोल कर देखिए, वो सब कुछ कर जाएंगे आपके चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए। पर दोस्तों, आप जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने माता पिता को अपमानित मत कीजिएगा। जी हाँ, कभी भी अपने माता पिता को पलट कर जवाब नहीं दीजिए, उनका कहना माने, क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि आप बहुत सफल हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं और आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं हैं। और साथ ही साथ जितने माता पिता हमें सुन रहे हैं उन सब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे में अचानक कोई बदलाव आ रहा है, अचानक उसके व्यवहार में बदलाव है, तो आप अपने बच्चे को वक्त दीजिए। जी हाँ, आपको उनका दोस्त बनना होगा और वो आपको सब कुछ बता देंगे और फिर आप अपने बच्चे को वैसा ही जैसे वो पहले था वापस फिर से पालेंगे। दोस्तों, एक संत ने इस प्रकार कहा कि जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनका कहना मानते हैं, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। और कई बार हम ईश्वर के भक्त हो जाते हैं या ईश्वर को तो पाना चाहते हैं, लेकिन एक संत ने इस प्रकार भी कहा कि परमात्मा का या ईश्वर का पहला दर्शन हमें हमारे माँ बाप में होता है। So, दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप अपने विचार, अपने सुझाव और अपने परामर्श हमको भेज सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1, और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311 फोर जीरो

0: 04।
1: हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सप्ताह में दो बार प्रसारित किया जाता है, संध्या 7:45 पर, हर बुधवार और रविवार। जी हाँ, संध्या 7:45 पर, हर बुधवार और रविवार।
0: और अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारा नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: रोहित शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that the joint commission between India and Indonesia is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. The External Affairs Minister made these opening remarks while co-chairing India-Indonesia Joint Commission meeting in New Delhi. He said that both nations celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year.
1: Our joint commission is happening after 4 years, and I think it's important to recognize that in those 4 years, we made good progress in our bilateral relations. Today, I look forward to extensive discussions with you, covering the full spectrum of our bilateral cooperation, from political to defense and security, maritime trade and investments, health and pharmaceuticals, food security, as well as tourism, education and cultural cooperation.
0: The government says Indian households continue to receive cooking gas at among the lowest prices globally, despite a sharp rise in international LPG prices. In a statement, the Petroleum and Natural Gas Ministry said that the Indian cylinder is cheaper than in any neighboring country and far below the price in advanced economies such as the United States, Australia, and Canada. It noted that a beneficiary of the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana pays 642 rupees for a 14.2 kilogram LPG cylinder after receiving a direct benefit transfer of 300 rupees on the first 4 refills annually, while the retail price for a general consumer in Delhi stands at 942 rupees. Today is the last day to submit applications for verification of issues observed and re-evaluation of answers on the post-result services portal for CBSE Class 12 Examination 2026. In a social media post, Central Board of Secondary Education said that the portal will remain open until midnight. It asked the students to complete and submit their applications before the deadline. The Central Bureau of Investigation, CBI, conducted searches at 6 premises at Chandigarh, Panchkula and Delhi NCR region yesterday in connection with the ongoing investigation with IDFC First Bank and AU Finance fraud case. The case is related to 661 crore rupees misappropriation fraud and siphoning of the government funds in 8 departments of Haryana government and 2 departments of Municipal Corporation Chandigarh and Crest Chandigarh. In a statement, the CBI said that the search operations are carried out at residential premises of senior public servants of Haryana Cadre and a private consultant firm and its director in connection with irregularities committed and with regard to receipt of proceeds of crime. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandviya participated in the 77th edition of Fit India Sundays on Cycle initiative in New Delhi this morning. Talking to the media, the minister said that cycling keeps the planet clean and offers a solution to the major problem of traffic congestion. Actor Vikrant Messi, who also participated in the Fit India Sundays on Cycle, described the initiative as incredible and said it has now become a movement. The Telugu Desam Party TDP has announced its 3 candidates for the Rajya Sabha elections scheduled to be held on the 18th of this month. TDP National President N. Chandrababu Naidu released the list of candidates, which includes industrialist Sana Satish, educationist and Bhashyam Educational Institutions Chairman Bhashyam Ramakrishna, and TDP Social Media Wing Chief Chintakayala Vijay. World Food Safety Day is being observed today globally. The day highlights food safety as a shared right and responsibility and serves as a powerful opportunity for collective action. Sharing a social media post on the occasion, Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda urged citizens to adopt healthy eating habits and contribute to building a fit and self-reliant India. In men's cricket, India were 544 for 8 in their first innings on day 2 of the one-off test against Afghanistan in New Chandigarh when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, विश्व में सबसे सस्ती रसोई गैस पाने वाले देशों में भारत। उज्ज्वला लाभार्थियों को 642 रुपए में मिल रहा सिलेंडर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों तथा आईटी सेल के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। दोपहर बाद सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मंथन। सिमडेगा की महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आम को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम का बाजार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की सराहना, बताया लोकल टू ग्लोबल का सशक्त उदाहरण। पाकुड़ में जालसाजी को लेकर दर्जन भर पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रिपोर्ट में छेड़छाड़ का आरोप। और गुजरात में प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित। रांची के रोशन थापा ने सीनियर बी कैटेगरी के ट्रेडिशनल इंडिविजुअल इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। एक रिपोर्ट।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के लाभार्थी को पहले 4 रिफिल पर सालाना 300 रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिलने के बाद 14 किलो 200 ग्राम के एलपीजी सिलेंडर के लिए 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। मंत्रालय ने बताया है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा चुकाई गई प्रभावी कीमत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका सहित पड़ोसी देशों में खाना पकाने की गैस की कीमतों से कम है। आकाशवाणी रांची के समाचार कक्ष से संपादक मीनाक्षी राय के साथ मैं आसिया नाजली।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को भी दोहराया जिसमें उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य और एक मजबूत राष्ट्र के लिए खाद्य तेल का इस्तेमाल 10% कम करने और संतुलित आहार अपनाने की बात कही थी। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है, समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड दौरे के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों, प्रदेश प्रवक्ता तथा आईटी एवं मीडिया सेल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर बाद सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। इससे पहले अपने एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने श्री नवीन बोकारो पहुंचे। भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।
4: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं और मुझे लगता है कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में बहुत ही ऊर्जा का संचार होगा। और जिस तरह से उनके कदम पड़ते ही बंगाल विजय हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि झारखंड में उनके कदम पड़े हैं, हम आने वाले समय में बोकारो विजय भी करेंगे और झारखंड विजय भी करेंगे।
2: रांची से बोकारो जाने के क्रम में रामगढ़ में श्री नवीन ने शहीद निर्मल महतो चौक पर निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कल नामांकन की आखिरी तारीख है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा और नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब राजनीतिक दलों की नजर आगे की रणनीति और संभावित चुनावी समीकरणों पर टिकी है। झारखंड के सिमडेगा जिले की महिला किसानों के उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम भेजी गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस उपलब्धि को वोकल फॉर लोकल से लोकल टू ग्लोबल का एक शानदार और सशक्त उदाहरण बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि अपीडा के निरंतर प्रयासों से स्थानीय किसानों को बेहतर मूल्य, महिला किसानों को नई पहचान और भारत के कृषि निर्यात को नई गति मिल रही है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। पैकड़ में जिला खनन कार्यालय से निर्गत रिपोर्ट में छेड़छाड़ और जालसाजी किए जाने को लेकर दर्जन भर पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने पत्थर खदानों का लीज हासिल करने के लिए खनन कार्यालय द्वारा निर्गत सन्निहित रिपोर्ट में छेड़छाड़ और जालसाजी कर राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाधान निर्धारण प्राधिकरण रांची से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने एवं खनन पट्टा हासिल करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराए। जामताड़ा जिला में उपायुक्त आलोक कुमार के निर्देश पर वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में जांच टीम ने जिले के चिन्हित पंचायतों में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उपायुक्त ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
5: हमारे सारे वरीय पदाधिकारी हर एक पंचायत में जाकर ग्राउंड लेवल पे जो हमारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है और उसमें उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हम लोग और कैसे कर सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं ग्राउंड लेवल पे जो हम लोगों को इनपुट मिलेगा उसको हम लोग एज अ डिसीजन मेकिंग में यूज करेंगे, जिससे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो झारखंड सरकार की योजनाएं हैं, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनका हो सके।
2: कोडरमा के झुमरी तिलैया में जूट से उत्पाद तैयार कर न सिर्फ महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि प्लास्टिक मुक्त भारत के संकल्पों को साकार करने में जोर जोर से जुटी हैं। इंदरवा की रहने वाली राधा यादव के साथ तकरीबन 20 महिलाएं महिला सशक्तिकरण के साथ प्लास्टिक मुक्त के संदेशों को साकार करने में जुटी हैं।
6: मेरे साथ 20 महिलाएं हैं, कुछ बच्चे भी हैं जो 18 से 20-21 साल के हैं, और ये सब को हम एक जगह इकट्ठा किए। जब उन लोग के हाथ में पैसा आया तब ये लोग अच्छा लगा कि ये अपना पैसा है। अब सोचते हैं कि ये कुछ धीरे धीरे अगर ये लेडीज भी सीखे और अपना व्यापार कर सके और इससे भी और आगे जाएं।
2: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपये प्रति किलो है। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रांची द्वारा फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक CP सिंह और महापौर रोशनी खलको शामिल हुए। सभी अतिथियों ने युवाओं को फिट इंडिया आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। गुजरात में आयोजित प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में रांची के रोशन थापा ने सीनियर बी कैटेगरी के ट्रेडिशनल इंडिविजुअल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर भारत और झारखंड का मान बढ़ाया। 78 देशों में 400 से ज्यादा खिलाड़ियों के बीच रोशन ने अपने उत्कृष्ट कौशल, शारीरिक संतुलन और कठिन आसनों से जजों को प्रभावित कर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा विश्व में सबसे सस्ती रसोई गैस पाने वाले देशों में भारत। उज्ज्वला लाभार्थियों को 642 रुपए में मिल रहा सिलेंडर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों तथा IT सेल के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। दोपहर बाद सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मंथन। सिमडेगा की महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आम को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम का बाजार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की सराहना, बताया लोकल लोकल टू ग्लोबल का सशक्त उदाहरण। पाकुड़ में जालसाजी को लेकर दर्जन भर पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ FIR दर्ज, रिपोर्ट में छेड़छाड़ का आरोप। और गुजरात में प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित, रांची के रोशन थापा ने सीनियर बी कैटेगरी के ट्रेडिशनल इंडिविजुअल इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम मनोरंजनी, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शोभा गुरटू को। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले मिस्र खमाज में ठुमरी, बोल है आग कैसे धरूं धीर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम मनोरंजनी, और कलाकार थी शोभा गुरटू। और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और अब समय हो चला है सुगम संगीत का, जिसमें आज आप सुनेंगे हरिहरन की आवाज में चंद गजलें।

एचआईवी एक विषाणु है जिसका संक्रमण एचआईवी संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। एचआईवी एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: last came in. Prime Minister Narendra Modi has also congratulated the Indian women's football team on winning the SAF Women's Championship 2026. In a social media post, he said that the team played excellently through the tournament. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-Indonesia Joint Commission meeting underway in New Delhi. Comprehensive strategic partnership and ways to further deepen bilateral cooperation under review. Home Minister Amit Shah calls for close watch on financial and property transactions along international borders. CBSE to close Class 12 re-evaluation application window tonight. National award-winning Malayalam actor Saleem Kumar passes away in Kochi. IMD forecasts widespread rainfall across the country in next 2 to 3 days. And in cricket, India declare first innings at 564 for 8 against Afghanistan in one-off test in New Chandigarh. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
3: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक नीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
5: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्रों के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
6: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियेह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में छठे ओवर में एक विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दोस्तों आइए सुनते हैं अब फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ।

श्रोताओं, अभी आप अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म हॉलीडे से ये गाना सुन रहे थे, जिसे संगीत से संवारा था प्रीतम ने और शब्द रचना थी इरशाद कामिल की। अगला गाना है फिल्म एलओसी कारगिल से सोनू निगम की आवाज़ में। धुन है अनु मलिक की और जावेद अख्तर ने इस गाने को लिखा है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। और अब अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मिशन रानीगंज से। सुर है बी पराग के, धुन बनाया है आरको ने, और ये रचना है डॉक्टर कुमार विश्वास की।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का उद्घाटन किया। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में युवा और विद्यार्थी समेत बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। मंत्री ने इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर श्री सेठ ने कहा कि फिट इंडिया केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का राष्ट्रीय आंदोलन है। उन्होंने हर नागरिक से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य में अवैध कोयला खनन अब केवल अपराध नहीं रहा बल्कि यह सत्ता, प्रशासन, पुलिस और माफियाओं के गठजोड़ से चलने वाला एक संगठित काला साम्राज्य बन चुका है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि धनबाद के महेशपुर स्थित एक प्लांट के पास तीसरी बार अवैध सुरंग का मिलना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि बिना राजनीतिक संरक्षण इतने बड़े स्तर पर अवैध खनन संभव नहीं। झारखंड प्रवास के दूसरे दिन आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का रांची से बोकारो जाते समय कई स्थानों पर स्वागत किया गया। इस दौरान रामगढ़ और बोकारो जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा, जय घोष और गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से राज्य की जनता में गजब का उत्साह है।
1: सत्ता के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत दिनों के बाद रामगढ़ की धरती पर उपस्थित हुए हैं और उनका एक निजी कार्यक्रम है जिसके तहत वो बोकारो जा रहे हैं। वापस भी लौट किसी रास्ते पर भी दो घंटे के बाद में लौटेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा चुनाव के मामले में राज्य की सत्ता में शामिल गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंत्री ने रांची में कहा कि चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों के नामों का अंतिम निर्णय पार्टी लेगी।
2: गठबंधन का आपस में ही खींचतान है, सरकार की स्थिति ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं काफी बयानबाजी आपस में लोगों का। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी के लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शायद ठीक नहीं है जो दिख रहा है।
0: ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे ने आम लोगों से अपील की है कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 के तहत बीएलओ के घर आने पर सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि परिवार और रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी ध्यानपूर्वक साझा करने और फॉर्म सही ढंग से भरने पर भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मंत्री ने कहा कि आम जनता के सहयोग से ही एक मजबूत और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार हो सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक यात्री बस से भारी मात्रा में अवैध लॉटरी टिकट बरामद किया है। पुलिस ने बस चालक और एक बस कर्मी को हिरासत में लिया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध लॉटरी कारोबार का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें कौन कौन शामिल है। चतरा जिले में एक जांच चौकी के पास पुलिस बैरिकेड से मोटरसाइकिल टकराने से दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने आज बताया कि दुर्घटना बागरा रांची मुख्य मार्ग पर जब्बा जांच चौकी के पास हुई। दोनों मृतक दुंदुआ गांव के निवासी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

ये आकाशवाणी का राज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाजों में रईस फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ। संगीतबद्ध किया है जैम 8 ने और शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की।

झारखंड की खूबसूरत राजधानी रांची से आप सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रांची का स्नेह भरा अभिवादन। तो आइए सुनते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम रांची मेलोडीज। यह वह मंच है जहां संगीत की मिठास हर दिल तक पहुंचती है, जहां हर धुन एक कहानी कहती है। संगीत केवल आवाज नहीं, एक एहसास है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। रांची मेलोडीज इसी एहसास को समर्पित है। तो आइए श्रोताओं, इसी सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत का।

श्रोताओं, अभी आप हिम्मतवार फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे, जिसे गाया था बाबुल सुप्रियो और साधना सरगम ने, संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने और ये रचना थी समीर की। और अब बारी है एक मधुर और भावनात्मक गीत की, जो दिल को छू जाए और मन को शांति दे। तो पेश है M.M. करीम और चित्रा की आवाजों में फिल्म इस रात की सुबह नहीं से ये प्यारा सा गीत, जिसे संगीत से संवारा है M.M. करीम ने और शब्द रचना है निदा फजली की।

शाम ढलते ही जब थकान महसूस हो तो संगीत सबसे बड़ा सुकून बन जाता है, और यही सुकून हम आप तक पहुंचाते हैं हर दिन रांची मेलोडीज के जरिए।

जी हाँ दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत जिसे आपने अभी सुना, इसे हमने लिया था फिल्म अंदाज से। स्वर थे अलका याग्निक और उदित नारायण का। नदीम श्रवण ने धुन तैयार की थी और ये रचना थी समीर की। संगीत की यही विशेषता है कि कुछ ही क्षणों में यह मन को हल्का कर देता है, और यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, संगीत के माध्यम से आपके दिन को बेहतर बनाना। तो इसी के साथ आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाजों में सरबजीत फिल्म से ये मधुर संगीत। तर्ज बनाया है अमाल मलिक ने और ये रचना है रश्मि विराग की।

आइए अब सुनते हैं ये भावनात्मक गीत जो आपकी यादों को ताजा कर देगा। तो ये गाना है फिल्म एयरलिफ्ट फिल्म से अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाजों में। धुन है अमाल मलिक के और कुमार ने इस गाने को लिखा है।

प्रिय श्रोताओं, संगीत के इस सुंदर सफर को अब हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज का रांची मेलोडीज कार्यक्रम आपके मन को सुकून दे पाया होगा। इसी विश्वास के साथ हम आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे यहीं इसी समय नई धुनों के साथ। नमस्कार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का उद्घाटन किया। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में युवा और विद्यार्थी समेत बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। मंत्री ने इस दौरान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर श्री सेठ ने कहा कि फिट इंडिया केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का राष्ट्रीय आंदोलन है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य में अवैध कोयला खनन अब केवल अपराध नहीं रहा बल्कि यह सत्ता प्रशासन पुलिस और माफियाओं के गठजोड़ से चलने वाला संगठित काला साम्राज्य बन चुका है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि धनबाद के महेशपुर स्थित एक प्लांट के पास तीसरी बार अवैध सुरंगों का मिलना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे ने आम लोगों से अपील की है कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 के तहत बीएलओ के घर आने पर सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए। मंत्री ने कहा है कि परिवार और रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी ध्यानपूर्वक साझा करने और फॉर्म सही ढंग से भरने पर भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक यात्री बस से भारी मात्रा में अवैध लॉटरी टिकट बरामद किया है। पुलिस ने बस चालक और एक बस कर्मी को हिरासत में लिया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध लॉटरी कारोबार का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें कौन कौन शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बाल सभा, बस इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: कैसे हैं बच्चों? आपके मुस्कुराते चेहरे बता रहे हैं कि आप एकदम ठीक हैं। और गर्मी की छुट्टी यानी इन दिनों का आनंद मम्मी के हाथों तरह तरह के बनाए भोजन खाकर और दोस्तों संग खूब खेलकर उठा रहे होंगे,
1: और बीच बीच में कहीं घूमने जाकर भी, या फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर, दोस्तों के यहाँ, उनके जन्मदिन जैसे पार्टी में जाकर तरह तरह के व्यंजन खाकर खूब लुत्फ़ उठा रहे होंगे।
0: बच्चों, यहाँ एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पार्टियों या कभी कभी घर में भी कुछ लोग अपनी भूख से ज्यादा भोजन थाली में ले लेते हैं और पूरा भोजन नहीं खा पाते।
1: ऐसे में थाली में बचा खाना कूड़े के डब्बे में फेंकना पड़ जाता है, जो कि भोजन की बर्बादी है। बच्चों, जानते हैं बच्चों, हमारी आपकी यानी सभी की थाली में भोजन कई लोगों की कड़ी मेहनत से आता है, और इसे कभी भी फेंकना या बर्बाद नहीं करना चाहिए।
0: हम सबकी थाली तक अन्न पहुँचे, इसके लिए हमारे किसान भाई बहन खेत में तेज धूप, बारिश, ठंड सब मौसम को सहते हुए कड़ी मेहनत करके फसल उगाते हैं।
1: और इतना ही नहीं बच्चों, घर में लाने के बाद भी उसको मम्मी परिश्रम से साफ सुथरा करती हैं और फिर उसको पकाती हैं, और तब आपको प्रेम के साथ थाली में परोसती हैं, है ना?
0: हाँ बच्चों, इतने सारे लोगों के द्वारा की गई मेहनत के बाद ही भोजन हम सभी लोगों तक पहुंच पाता है। यदि हम उसे जरूरत से ज्यादा लेकर फेंक देते या खाना थाली में छोड़ देते हैं, तो ना सिर्फ खाना या अन्न का अपमान करते हैं, बल्कि उसके साथ ही उन संसाधनों का भी अपमान करते हैं जो उसको तैयार करने में लगे होते हैं। जानते हैं बच्चों, दुनिया भर में आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पेट भर भोजन नहीं मिल पाता और मजबूरी में उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है।
1: इस समस्या से निपटने के लिए हम सभी की ये सामाजिक जिम्मेदारी बनती है बच्चों कि अपनी थाली के भोजन को बर्बाद नहीं होने दें, यानी भोजन उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। और बच्चों, हम आपको बता दें कि आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, और इस खास दिन पर आइए हम एक संकल्प लेते हैं कि हम आज के बाद भोजन बर्बाद नहीं करेंगे, थाली में खाना नहीं छोड़ेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और अब बच्चों को हम क्या बताने जा रहे हैं?
0: भैया, अब हम बच्चों को बताने जा रहे हैं छुट्टियों में सीखे नई नई कलाएं, क्योंकि छुट्टियों का दिन आया है, बच्चों के मन को भाया है। अभी ना वे पढ़ने जाएंगे, अपने अंदर की कला को अब तो बाहर लाएंगे।
1: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, कि अपने भीतर की कला को बाहर दिखाने और सीखने का ये खास समय होता है।
0: बच्चों, जैसा कि पहले हमने चर्चा की कि आप लोगों की स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, सवेरे सवेरे जगने और स्कूल जाने की चिंता इस समय तो बिल्कुल नहीं होगी आपको।
1: ऐसे में आप अपने इस सुनहरे खुशनुमा दिन का उपयोग खेलने के साथ साथ बच्चों एक और अच्छे काम के लिए आप कर सकते हैं।

0: और वो काम है नई कलाओं को सीखने का।
1: हाँ बच्चों, इस गर्मी की छुट्टी में आप अपनी पसंद के काम, जैसे कि आपको गाने में रुचि है तो संगीत का प्रशिक्षण ले सकते हैं, गायन सीख सकते हैं। किसी को नृत्य में रुचि है तो वे किसी प्रशिक्षक से नृत्य का प्रशिक्षण ले सकते हैं। यदि आपको कविता या कहानी बहुत पसंद है तो उसे भी आप लिख सकते हैं। यदि चित्रकला सीखना और बनाना चाहते हैं तो उसे सीख कर उसमें अपनी कल्पना से सजा सवार सकते हैं।
0: इतना ही नहीं बच्चों, ओरिगामी और क्राफ्ट से अपनी कला को ऊंची उड़ान दे सकते हैं।
1: अगर कुकिंग में मन लगता है आपका बच्चों, तो मम्मी से आसान रेसिपी सीखकर कुछ कुछ चीजें भी बना सकते हैं आप, जैसे कि सैंडविच, मैंगो शेक वगैरह। नई चीजों को सीखने और अंदर की प्रतिभा को निखारने से आपका दिमाग और तेज होगा, आप अपने दोस्तों के बीच जीनियस कहलाएंगे।
0: तो आलस को कहो बाय बाय टाटा, और आज ही अपनी हॉबी रुचि के अनुसार अपने काम में लग जाइए। नई नई कलाएं सीखिए और समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यही वो समय है कुछ नया करने का और अपने अंदर के छुपे हुए सुपर कलाकार को बाहर निकालने का, जो देगा आपको एक अलग पहचान और आपके सपनों को खूबसूरत पंख। तो चलिए बच्चों, बातें तो होती रहेंगी लेकिन अब थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए, और मनोरंजन हम आपको करवाते हैं एक बाल गीत सुनाकर।

0: बालगीत तो भैया आपने बहुत अच्छा सुनवाया बच्चों को।
1: तो अब बच्चे भी तैयार हैं दीदी को सुनाने के लिए। तो चलिए बच्चों से भी सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
2: आपका नाम क्या है और क्या सुनाएंगे अपने दोस्तों को?
3: मेरा नाम शिवांश भारद्वाज है, मैं पहली कक्षा का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने एक मजेदार कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है होमवर्क। होमवर्क आया झूम झाम, बोला कर लो मेरा काम। मैंने कहा जरा ठहरो भाई, पहले खेलूं फिर पढ़ाई। पेंसिल बोली मुझे चला, नोटबुक बोला मुझे सजाओ, इरेजर बोला गलती मिटाओ। सब मिलकर मुझको समझा, मैंने सोचा बात है सच्ची, आदत होनी चाहिए अच्छी। बैग से अपनी पुस्तक निकाली, खुल गई ज्ञान की सुंदर हरियाली। गणित के प्रश्न बड़े थे न्यारे, कुछ आसान कुछ थे भारी। हिंदी की कविता गुनगुनाई, अंग्रेजी की स्पेलिंग दोहराई। कभी कभी मन थोड़ा घबराता, खेल का मैदान याद दिलाता। फिर मम्मी प्यार से समझाती कि मेहनत करके ही आगे जाते, पढ़ाई और खेल का होता मेल, यही सफलता की सच्ची रेत। रोज समय पर काम करूंगा, आलस से दूर रहूंगा, धन्यवाद।
2: वाह, बहुत सुंदर कविता। आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम माही पांडे है, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ रही हूँ। आज मैं एक सुंदर सी कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ऐसे सूरज आता है। पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल। लाल रंग बिखरता है, ऐसे सूरज आता है। गाती हैं चिड़ियां सारी, खिलती हैं कलियां प्यारी। दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती नहीं न रहती तब। धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है। सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है, धन्यवाद।
2: बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। और आप क्या सुनाएंगे? पहले अपना नाम बताइए।
5: नमस्कार, मैं नव्या गुप्ता आज श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जो बीत गई। यह कविता मुझे बेहद पसंद है। जब मैं दुखी या हताश होती हूँ तो इस कविता को अवश्य सुनती हूँ। यह कविता मुझे एक नई सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। यह कविता हमें आगे बढ़ते रहने और जीवन की अस्थिरता को अपनाने का एक सशक्त संदेश देती है। यह कविता कुछ इस प्रकार है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई, मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं। जो माद कता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई,
2: जो बीत गई सो बात गई। वाह, बहुत ही सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। आपका नाम क्या है?
6: मेरा नाम जनिशा मिश्रा है और मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी बारी आएगी। सफलता से थोड़ी दूरी है, क्योंकि तैयारी अभी अधूरी है। वक्त लगेगा और मुझे पर लक्ष्य पर नजर पूरी है। सब

0: बच्चे जो बहुत बड़े, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। आंखों में अब नींद कहाँ, कहाँ हिम्मत मैंने हारी है। बढ़ूंगी और हासिल करूंगी, पूरी कोशिश जारी है। होगा एक दिन ऐसा भी जब कहूंगी हाँ आज मेरी बारी है। धन्यवाद।
1: वाह, बच्चों ने तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई दीदी।
2: बिल्कुल,
1: तो चलिए बच्चों को कुछ और जानकारी दे दी जाए।
2: बिल्कुल। धरती हमारी सबसे न्यारी, इसमें बसती है दुनिया सारी। इसकी छटा है बड़ी निराली, चारों ओर फैली है हरियाली। सबसे सुंदर सबसे प्यारी, रंग रंगीली धरा हमारी। इससे ही जुड़ती है जीवों की खुशहाली, देती हम सबको ये खुशियाँ सारी।
1: वाह दीदी वाह, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई कविता के माध्यम से। और आपने जो बताया कि हमारी धरती सभी प्राणियों को ढेर सारी खुशियाँ देती है। जानते हैं बच्चों, हमारी पृथ्वी यानी धरती को अंतरिक्ष से देखने पर ये नीले रंग की दिखाई देती है और इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है।
2: दरअसल इसके 71% हिस्से पर महासागर फैले हुए हैं। ये महासागर हमारी धरती के दिल के रूप में है, जो धरती को जीवन दायिनी बनाने में सहायता करते हैं। बच्चों,
1: लेकिन बच्चों आज ही महासागर हम इंसानों की गलत गतिविधियों के चलते गहरे संकट में आने लगे हैं।
2: यदि हमें अपनी धरा यानी नीले ग्रह को बचाना है तो सबसे पहले अपने महासागरों की सुरक्षा करनी होगी। बच्चों, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम यदि छोटे छोटे प्रयास करें तो एक बड़ी सफलता महासागर को बचाने के रूप में हमें मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं इन छोटे छोटे कदमों के बारे में।
1: सबसे पहले तो सिंगल यूज प्लास्टिक को जहाँ तक संभव हो सके बच्चों उसके इस्तेमाल से बचना चाहिए।
2: प्लास्टिक वाले कचरों तथा अन्य कचरा नदियों समुद्रों में नहीं फेंकना चाहिए।
1: महासागर बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं बच्चों, इसलिए उनका पानी अम्लीय होता है जो समुद्री जीवों को हानि पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कम हो इसके लिए छोटी या कम दूरी के लिए साइकिल अथवा पैदल चलना चाहिए, जो ऊर्जा की भी बचत करेगा।
2: तो बच्चों, इस तरह से छोटे छोटे हमारे प्रयासों से महासागरों का प्रदूषण कम होगा, जिससे इस धरती को सुरक्षा मिलेगी। तो हम सब मिलकर करें प्रण कि कल यानी 8 जून को विश्व महासागर दिवस पर लेंगे ये संकल्प कि छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे, प्लास्टिक को ना कहेंगे, कपड़े और जूट के थैले से काम हम चलाएंगे।
1: नदियाँ समुद्र पहाड़ हमारे, इसमें ना कभी कचरा फैलाएंगे, व्यर्थ पानी ना गवाएंगे, थोड़ी दूरी के लिए पैदल ही हम चलकर जाएंगे, करेंगे सुरक्षा महासागरों की, हम खुद सुरक्षित हो जाएंगे। तो बच्चों, अभी आपने जाना कि महासागरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और इन महासागरों को बचाने का दायित्व भी हमारा है। बच्चों, गर्मियों का मौसम आते ही तेज धूप और गर्म हवाएं चलने लगती है और इन गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है, लू, है ना। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तेज धूप या अत्यधिक गर्मी में रहता है तो वो इससे बीमार पड़ सकता है। लू लगने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है और व्यक्ति अस्वस्थ महसूस करने लगता है।
2: बच्चों, लू लगने के लक्षण है तेज सिर दर्द होना, चक्कर आना, बहुत अधिक प्यास लगना, कमजोरी महसूस होना। लू से बचने के लिए जानते हैं बच्चों क्या उपाय करना चाहिए? खूब पानी पीना चाहिए, धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
1: और बच्चों, दोपहर 12 बजे से, और हम तो ये कहते हैं कि अभी तेज गर्मी है तो दोपहर नहीं 10 बजे के बाद से लेकर 4 बजे तक धूप सबसे तेज होती है और इस समय बाहर खेलने या घूमने से बचना चाहिए। बच्चों, हल्के और सूती कपड़े पहनना चाहिए, इससे शरीर को ठंडक मिलती है। हाँ, एक बात और है, अगर आपको बाहर निकलने की जरूरत ही पड़ जाए तो बाहर निकलते समय टोपी जरूर पहने, छाता लगाएं या गमछे का उपयोग करें।
2: बच्चों, गर्मी के मौसम में पौष्टिक और हल्का भोजन भी करना चाहिए। गर्मी में ताजे फल, सलाद, दही, छाछ और घर का बना हल्का भोजन खाना चाहिए। बहुत ज्यादा तला भुना भोजन खाने से बचना चाहिए। मौसमी फलों का सेवन करिए, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, आम और नारियल का पानी शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है, इसको जरूर खाना और पीना चाहिए।
1: हाँ बच्चों, और यदि किसी को लू लग ही जाए तो क्या करना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। तो उसे तुरंत छायादार या ठंडी जगह पर ले जाएं, पानी पिलाएं, नींबू पानी दें या ओआरएस का घोल या छाछ पिलाएं। शरीर को

0: गीले कपड़े से पोंछे, यदि हालत गंभीर लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, यानी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो बच्चों, गर्मी का मौसम मज़ेदार तो हो सकता है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही ज़रूरी है।
0: और इन छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर बच्चों, हम गर्मियों में स्वस्थ और खुशहाल रह सकते हैं। तो चलिए बच्चों, लू से बचने के उपाय तो आप जान गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने दोस्तों को इन जानकारियों से अवगत कराएंगे। और अब दीदी, अब बच्चों का कुछ मनोरंजन भी करवाना चाहिए, तो बच्चों के मनोरंजन के लिए हम लेकर आए हैं एक बाल कहानी, और कहानी का नाम है कुत्ते की वफादारी।
1: उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि, और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है बच्चों।
0: बच्चों, पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वो अपने ऊँटों पर सामान लादकर शहरों में ले जाता था, और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा भी कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर सा कुत्ता था, और कुत्ता भी बड़ा वफादार था। रात को वो बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौं भौं कर कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था।
1: एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत उसे आन पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे?
0: लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत एक साल में ही चुका दूंगा।
1: सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में रख दो मेरे पास। जब तुम हमारे सारे पैसे लौटा दोगे तब मैं तुम्हें कुत्ता वापस दे दूंगा।
0: बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा भी नहीं था। रुपये लेकर वो चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया, और वहां से नौ दोई कारा हो गए।
1: कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। घर जाकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांध कर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा।
0: इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वो सेठ को अपनी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्तों को अपनी ओर आते हुए देखा। वो नाराज हो गया। सोचने लगा, कुत्ते ने मेरी जबान नहीं रखी, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसने आओ न देखा ताओ, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है।
1: लाखा तो चकित ही हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटण जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है।
0: तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब दीदी, हम हर हफ्ते किसी न किसी प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में बच्चों को जानकारी देते हैं, तो आज के जो हमारे प्रेरक व्यक्तित्व हैं,
1: महान स्वाधीनता सेनानी शहीद बिरसा मुंडा,
0: जिनको हम लोग धरती आबा के नाम से भी जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश और समाज को नई दिशा दी। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी, जननायक और आदिवासी समाज के गौरव थे बिरसा मुंडा। उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए आदिवासी समाज को जागरूक करने का काम किया। हर वर्ष 9 जून को उनका बलिदान दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है।
1: बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलिहातु गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी था। बचपन से ही बिरसा अत्यंत बुद्धिमान, जिज्ञासु और साहसी थे।
0: बच्चों, बिरसा को बचपन में भेड़ बकरी चराने का काम दिया जाता था। जब उन्हें भेड़ बकरी चराने के लिए कहा जाता था, तो वे उन्हें छोड़कर पेड़ की किसी शाखा पर बैठकर बांसुरी बजाने लग जाते थे। इन सब से परेशान होकर माता पिता ने बिरसा को उनके मामा के गाँव में भेज दिया, जहाँ से बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी हुई। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे बच्चों। पढ़ाई में रुचि को देखते हुए उनके शिक्षक जयपाल नाग ने उन्हें आगे पढ़ने की हिदायत दी। वो उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए चाईबासा के ईसाई मिशनरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने की सलाह उन्होंने दिया। 2 साल पढ़ाई करने के बाद वो वापस फिर अपने गाँव लौट आए।
1: उस समय आदिवासी समाज अंग्रेजों, जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों से पीड़ित था। उनकी जमीनें छीनी जा रही थी, उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे और उन्हें जबरन मजदूरी करने के लिए मजबूर भी किया जा रहा था। बिरसा ने इन अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को देखा और इसके विरुद्ध आवाज उठाने का संकल्प लिया।
0: बच्चों, युवावस्था में उन्होंने आदिवासी समाज को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। बिरसा का मानना था कि समाज की उन्नति शिक्षा, एकता और आत्मविश्वास से ही संभव है। उन्होंने लोगों को नशाखोरी, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया। लोग उन्हें धरती आबा अर्थात धरती का पिता कहकर भी पुकारते थे।
1: बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया, उसे उल गुलान अर्थात महान जन क्रांति कहा जाता है।
0: सन 1899 और 1900 के दौरान उनगुलान आंदोलन अपने चरम पर था बच्चों, और बिरसा और उनके साथियों ने अंग्रेजी शासन को खुली चुनौती दी थी। इस आंदोलन से अंग्रेज अधिकारी घबरा गए। उन्होंने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया और अंत में 3 फरवरी 1900 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
1: गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को रांची सेंट्रल जेल में रखा गया। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। आधिकारिक रूप से मृत्यु का कारण बीमारी बताया गया, लेकिन ऐसा भी मत है कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया। इतने कम जीवन काल में उन्होंने जो कार्य किए, वे उन्हें अमर बना गए। भारत सरकार ने उनके योगदान को सम्मान देते हुए उनके जन्म दिवस यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है।
0: बच्चों, उन्होंने अपने समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 9 जून बलिदान दिवस के अवसर पर हम सभी को शहीद बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प करना चाहिए। बच्चों, भारतवर्ष सदैव इस महान क्रांतिकारी पुत्र का ऋणी रहेगा। उनका जीवन और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। तो दीदी, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है।
1: चलते चलते हम आपको बता दें बच्चों कि कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव पांडे की थी।
0: तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी बच्चों, तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
2: जय हिंद बच्चों।
3: कार्यक्रम बाल सभा यही समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी कराची केंद्र है। आइए अब हम आपको हमारी 30 सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। इस कार्यक्रम विवरण के बाद हम हाजिर होंगे फिल्मी संगीत के साथ कार्यक्रम सांझ सरगम के अंतर्गत 5:02 पर आप सुनेंगे युवाने जिसमें आज चर्चा का विषय होगा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। साथ ही साथ आप जानकारी लेंगे खाद्य सुरक्षा और भारत अन्नपूर्णा योजना के विषय में। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। दोस्तों कार्यक्रम श्रमिक लोग का समय आपको पता है 5:30 पर। आज हम जानकारी लेंगे हर थाली में पोषण, हर घर में भोजन, खाद्य सुरक्षा का असली महत्व, सत्याग्रह का जन्म, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन 7 जून 1893। कॉम्पेयर होंगे सुषमा एका और आशीष कश्यप और प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। शाम को 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार और 6:02 पर वक्त होगा खेती बाड़ी का जिसमें आज चर्चा का विषय होगा एकीकृत कीट प्रबंधन। और साथ ही साथ हम जानकारी लेंगे गर्मा मूंग फसल की देखरेख के विषय में। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह भेंटकर्ता एवं प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। कार्यक्रम हमारी दुनिया का समय होगा 6:32 और आज आप जानेंगे समय को व्यर्थ न गवाई के विषय में। और खुरता वार्ता में हम जानकारी लेंगे जलवायु परिवर्तन के विषय में। वार्ताकार होंगे अजय कुमार दास और प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। जिले में आजकल का वक्त आपको पता ही होगा दोस्तों 7:11 और 7:15 पर आप सुनेंगे हमारे हिंदी साहित्यिक पत्रिका शतदल। कविताएं होंगी सदानंद सिंह यादव की और कहानी रीता गुप्ता की। प्रस्तुति स्वर प्रणव कुमार का और प्रस्तुति प्रशांत कौरव की। संथाली समाचार पत्रिका का समय होगा 7:45 और फिल्म संगीत का वक्त होगा रात 8 बजे। हमारा विषय कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण आप सुन सकेंगे 8:10 पर और 8:45 से क्रमशः हिंदी अंग्रेजी और उर्दू समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। और 9:30 पर वक्त होगा रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिसे आप सुनेंगे 9:30 पर। और रात के 10 बजे से वक्त होगा रविवासीय अखिल भारतीय संगीत सभा का। आज आप सुनेंगे विशाखापट्टनम के टॉप श्रेणी के कलाकार विदुषी डॉक्टर मंदा सुधा रानी का कर्नाटक गायन। और रात्रि 11 बजे से क्रमशः आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर वीडियम वेब पर हमारी सभा यहीं समाप्त होगी। ये थे आज हमारी तीसरी सभा में प्रस्तुत होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। और अब से कुछ ही देर में हम हाजिर होंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम सांझ सरगम के साथ।

यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है और मैं आपकी रेडियो हम सफर सफर मोनिता स्वागत करती हूं आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सांझ सरगम में। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम लेकर हाजिर हुए हैं एक से एक सुपरहिट नगमे। क्या खूब कहा है किसी ने कि जिंदगी जिंदगी बदलती रहती है और हर पल कुछ नया होता है और हर मुश्किल का हल भी होता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी से हमेशा ये जरूर कहें कि जिंदगी आई लव यू।

जिंदगी की राहों में थोड़ी मुश्किलें होती हैं और कहाँ हर किसी की चाहते पूरी होती हैं। आप भी कभी अपनी जिंदगी से दोस्ती करके तो देखिए। जिंदगी का नाम दोस्ती भी तो है।

दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और इसे हर पल जीकर खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच में कल का भरोसा नहीं है। तो अपनी जिंदगी से प्यार करो और हो सके तो जिंदगी से कम नाराज भी रहो।

जिंदगी के सवालों से परेशान नहीं होना है, क्योंकि जिंदगी चुनौतियों और सपनों का संगम है, जहां हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है और हमें खुद पर विश्वास कराता है।

दोस्तों, हमारी स्टूडियो की घड़ी हमें बार बार ये इशारा कर रही है कि कार्यक्रम सांसर्गम यही समाप्त करें। तो आप अपनी रेडियो हम सफर मोनिता को इजाजत दीजिए। चलते चलते बस आपसे इतना ही कहेंगे कि जिंदगी की राहों में थोड़ी मुश्किलें जरूर होती हैं, और कहाँ हर किसी की चाहते पूरी होती है। तो आप भी जिंदगी को महसूस करें, सिर्फ जिए मत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सांझ सरगम। अब से कुछ ही देर में हम हाजिर होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार के साथ।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता भाजपा के कमल को राज्य में मजबूत करेगा। आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री नवीन ने दोहराया कि भाजपा ने ही झारखंड राज्य के गठन के लिए संघर्ष किया और वही इसे संवारेंगे भी। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के झारखंड दौरे से संगठन के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी काफी ऊर्जा और प्रेरणा मिल रही है। आज पत्रकारों से बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि इस दौरे से कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। हजारीबाग स्थित विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए MBA और BBA पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। MBA के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तथा BBA के लिए 5 जुलाई निर्धारित की गई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा

0: दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। चतरा जिले में एक जांच चौकी के पास पुलिस बैरिकेड से मोटरसाइकिल टकराने से दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने आज बताया कि दुर्घटना बागरा रांची मुख्य मार्ग पर जब्बा जांच चौकी के पास हुई। दोनों मृतक दुंदुआ गांव के निवासी थे। जापान के काका मीगाहारा में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में भारतीय टीम ने मेजबान जापान को 4-1 से पराजित किया। इस जीत में जमशेदपुर की नवल टाटा हॉकी एकेडमी के कैडेट आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोए का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज के सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का विशेष स्वागत है। श्रोताओं, अब हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती। देश की सीमाओं पर दिन रात डटे हमारे वीर सैनिकों को समर्पित यह कार्यक्रम। दोस्तों, रेडियो और सैनिकों का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। फौजी भाइयों के लिए जैसे कार्यक्रम दशकों तक, सैनिकों के लिए मनोरंजन और घर परिवार से भावनात्मक जुड़ाव का माध्यम रहे हैं। तो आइए देश के वीर जवानों को सलाम करते हुए शुरू करते हैं गीतों का ये खूबसूरत सफ़र।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कुमार शानू, उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया आदेश श्रीवास्तव के धुन पर फिल्म भाई भाई का ये गीत। और अब श्रोताओं, आपको जो गीत हम सुनवा रहे हैं वह गीत देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले वीरों को समर्पित अमर गीत आज भी हर भारतीय के मन में देशभक्ति की ज्योति को प्रज्वलित करता है। तो आइए सुनते हैं फिल्म हकीकत का ये गीत, कैफी आजमी का लिखा, मदन मोहन के धुन पर मोहम्मद रफ़ी और साथियों का गाया।

0: आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 8 जून संध्या 6:30 पर।
1: इस कार्यक्रम के पुनः प्रसारण को आप सुन सकेंगे 9 जून सुबह के 9 बजे।
0: कार्यक्रम में प्रस्तुति स्वर होगा संगीता शर्मा और सुनीता हांसदा का।
1: लेखन और संकलन संगीता शर्मा और सुनीता हांसदा का।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे राजेश कुमार राय।
1: ये प्रस्तुति होगी आकाशवाणी चाईबासा की।
0: तो सुनना ना भूले आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कार्यक्रम जय भारती में श्रोताओं आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों को समर्पित ये कार्यक्रम, और अब श्रोताओं सुनवा रहे हैं हमको कार्यक्रम का अगला गीत। अरिजीत सिंह के आवाज़ में सुनिए

तो श्रोताओं, देश प्रेम केवल रणभूमि में नहीं बल्कि हर उस दिल में बसता है जो अपने वतन की खुशहाली चाहता है। तो अभी आपने सुना फिल्म राजी का ये भावपूर्ण गीत अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में, और अब सुनवा रहे हैं आपको चलते चलते उम्मीद, विजय और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर यह गीत हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देता हुआ। फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर का ये गीत आप सुनेंगे सुखविंदर सिंह और तन्वी शाह की आवाज़ों में।

इसी के साथ समाप्त होता है हमारा फौजी भाइयों को समर्पित कार्यक्रम जय भारती। देश की सीमाओं पर तैनात हर जवान को हमारा शत शत नमन। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और सदैव विजयी रहें।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी। आज के खेती गृहस्थी में आपके साथ हैं कमलेंदु महतो।

सभी किसान भाइयों को कमलेंदु का सप्रेम जोहार एवं आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि सालों भर आप सभी अलग अलग फसलों की खेतीबाड़ी में लगे रहते हैं। लेकिन किसान भाई बहनों, खेतीबाड़ी के साथ साथ फलों की बागवानी भी अगर की जाए तो इससे बहुत अच्छा रोजगार का साधन या फिर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए काफ़ी अच्छा कार्य मिल जाता है। आप चाहें तो बेकार पड़े या फिर पठारी या फिर कोई भी जमीन पर विभिन्न प्रकार के फलदार पौधों को लगा करके बागवानी के रूप में कर सकते हैं, जिससे हर ऋतु में अलग अलग फल मिलते रहेंगे और सालों भर पैसों की कमी नहीं रहेगी। ऐसा सोचकर ही लगाएं उद्यान बनाने के लिए समुचित सुविधा। आत्मा उद्यान विभाग और अन्य संस्थाएं भी हैं जो आपको काफ़ी मदद करते हैं। हर प्रकार के फलों के मांग को देखते हुए बाजारों में आप सभी कोई देख भी आते हैं और मौके पर बहुत अच्छा मुनाफा यानी ऊंचे मूल्य पर बिकते भी हैं, जिससे किसान भाइयों को अच्छा लाभ मिलता है। बाजार व्यवस्था की बातें करें तो फिर आप स्वयं खुदरा या फिर थोक भाव में एकमुश्त किसी व्यापारी या फिर संबंधित विभाग से संपर्क करके बेच सकते हैं। फलों की बागवानी में ज़्यादा मेहनत तो नहीं है, देखभाल जरूरी है और अपने पौधों को या फिर वृक्षों को बचाना जरूरी है। इससे सालों भर हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलता रहता है, क्योंकि अनेक प्रकार के फल लगे रहते हैं बागानों में। आम के बाद इससे जो भी नींबू है, लीची है, केला है, अलग अलग अमरूद, इस तरह से अलग अलग प्रकार के फलों को लगाएं और सालों भर कुछ ना कुछ हमेशा निकलता रहे, ताकि आपका जो आर्थिक स्थिति है वो सदैव बना रहे। इसलिए किसान भाई बहनों, फलदार या फिर इमारती पौधों की बागवानी करें और खुशहाल जीवन बिताएं। उद्यान विभाग के माध्यम से न सिर्फ पौधे बल्कि बाड़ लगाने के लिए, घेरान करने के लिए, सिंचाई के लिए या फिर खाद और अन्य जो भी सुविधाएं हैं, जरूरी चीज़ें हैं, सब चीज़ मुहैया की जाती है। तो आप संपर्क करें और बागवानी से संबंधित विस्तृत जानकारी लेते हुए आप बागवानी को अपने क्षेत्र में बना सकते हैं। ये आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रोजगार का माध्यम बन जाएगा। तो किसान भाई बहनों, अभी हम चर्चा कर रहे थे फलदार पौधों की बागवानी पर और इसके पश्चात हम थोड़ा मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक हो लोकगीत।

0: तो किसान भाइयों, अभी हम आनंद ले रहे थे इस होल लोकगीत के माध्यम से, और इस होल लोकगीत के पश्चात हम कुछ जानकारी लेते हैं। हमारे बीच एक सफल कृषक हैं मेहमान के रूप में, साधु गिलुआ जी, जो अपने क्षेत्र में जो भी खेती बाड़ी करते हैं, चाहे अनाज फसल हो, सब्जी फसल हो, या फिर जो भी कंद फसल क्यों ना हो, सबके लिए खेत की तैयारी यानी मिट्टी की तैयारी बहुत ज़रूरी है, तभी हम कोई भी फसल लगा सकते हैं। तो फसल लगाने के पूर्व हम मिट्टी की तैयारी खेतों में कैसे करते हैं, इन सभी बातों को लेकर के आज हम विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं साधु गिलुआ जी के साथ। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम एक युवा कृषक से मिलते हैं। आज हमारे बीच में है साधु गिलुआ जी, जो हम जानकारी देते हैं कि आज खेतीबाड़ी के क्षेत्र में कोई भी फसल लगाने के पूर्व यानी कि खेती के पूर्व हम खेत की तैयारी कैसे करें, मिट्टी की तैयारी कैसे करें, इस विषय को लेकर के आज हमारे बीच में है। तो साधु जी, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार।
1: जोहार सभी श्रोतागणों को भी। जोहार।
0: तो साधु जी, जैसे आप तो काफ़ी दिनों से खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं और सब्जी अनाज उसके साथ साथ और भी कुछ बागवानी भी करते हैं, तो सबसे पहले तो खेतों की जुताई या फिर मिट्टी की तैयारी करते होंगे, तो फिर आपके क्षेत्र में कोई भी फसल क्यों ना हो, तो उसमें खेत की तैयारी या मिट्टी की तैयारी आप लोग कैसे करते हैं शुरुआत में?
1: जी, खेत की तैयारी ही फसल को देखते हुए हम लोग तैयारी करते हैं।
0: अच्छा।
1: और उनमें जब फसल खट जाता है तो खाली पड़ा रहता है।
0: अच्छा।
1: धूप से हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। जब फिर बारिश होता है, उस बारिश के बाद हम लोग खेत की जुताई करते हैं।
0: अच्छा।
1: उसमें सुविधा के अनुसार, जैसा पारंपरिक रूप से हाल से भी जुताई करते हैं, ट्रैक्टर से या कुछ छोटे औजारों से भी जुताई करते हैं।
0: अच्छा।
1: और उस गर्मी से पहले जुताई करने से यह फायदा होता है कि उनमें जो भी जमीन की जितना कीट पतंग है और खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। और उसमें जितना गर्मी लगेगा जो जुते हुए जमीन मिट्टी उसमें उतना ही पैदावार होगा।
0: सही बात है।
1: और जब कुछ खरपतवार नष्ट नहीं होते हैं, उनको दोबारा फिर बारिश होगा उसमें और एक बार जुताई करते हैं, तो फिर वो खत्म हो जाते हैं।
0: अच्छा। मैंने पहले से जुताई करने से जब आप फसल लगाने के पूर्व बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है।
1: और उसमें जुताई करने में भी सुविधाजनक जी है,
0: मिट्टी भी मैंने टाइट नहीं रहता है और बहुत जल्दी जुताई भी हो जाता है
1: उसमें। और बाद में जब हम फसल लगाएंगे, कोई भी दाल हो या अनाज हो जो भी है, तो उसमें हमको फसल लगाने के लिए जो खेत की तैयारी आसानी से होगी।
0: आसानी से। तो ये जुताई के समय भी आप लोग कोई गोबर या फिर कंपोस्ट खाद या जो भी कूड़ा करकट है, ये सब पहले से डालते हैं कि जब फसल लगाने के पूर्व ही डाल देते हैं?
1: पहले जुताई में हम लोग नहीं डालते हैं।
0: अच्छा।
1: जब जुताई कर लेते हैं, जब उसमें
0: कुछ दिन
1: बचा रहता है और जब फसल लगाने का समय पहुंचेगा उसमें हल्का ऊपर जुताई से पहले ही उसको
0: छिड़क देते।
1: अच्छा। कंपोस्ट खाद या गोबर या जो भी घर के आसपास के पेड़ पौधों के पत्ता हुआ उसको डालते हैं, उसके बाद हल्का जुताई करते हैं, उसमें ज्यादा अंदर तक नहीं जुताई करते हैं।
0: अच्छा,
1: मिल जाता है। और उसमें मान लिया ज्यादा पानी आ गया, बाढ़ से भी उसको बाह के नहीं ले जा पाएगा। जी हाँ।
0: तो इस तरह से मिट्टी की तैयारी करते हैं। और जुताई जो पहले के अपेक्षा अभी काफी बदलाव भी देखा जा रहा है। लोग पहले हल जुताई करते थे भैंस या फिर बैलों के माध्यम से, और पहले का जुताई जैसे हम भैंस और बैल के माध्यम से वगैरह करते थे तो फिर हल्की जुताई होती थी और ज़्यादा गहराई तक नहीं होता था। फिर भी लोग वैसे ही खेती करते हुए आ रहे हैं और अभी भी जारी है और ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई कर रहे हैं, तो पहले के तुलना में क्या खर्च में काफ़ी कुछ अंतर हो रहा है या फिर क्या सुविधाजनक लग रहा है आपको?
1: जी, पारंपरिक हल जुताई और ट्रैक्टर की जुताई में खर्च का तो बहुत ही बड़ा अंतर है। क्योंकि ट्रैक्टर से ज़्यादा पैसों की खर्च होगी और पारंपरिक रूप से हल की जुताई में कम खर्च होगा, लेकिन हमारा जितना दूर हम हल जुतना चाहते हैं वो सीमित रूप से ही हल से जुताई हो पाता है। और ट्रैक्टर से जुताई करते हैं तो एक दो घंटा में हम दो तीन खेत
0: जुताई
1: हो जाता है। और हाल से दो तीन लोगों को बुला के हम लोग काम लगाते हैं, तो उनमें से ज्यादा जुताई नहीं कर पाते हैं और गहराई तक भी जुताई नहीं हो पाता था, जिससे कुछ सीधे जड़ वाले जो खरपतवार पौधे हैं वो नहीं उखड़ पाते हैं, जिससे खरपतवार बनी रहती है। जी हाँ,
2: तो वही मैंने एक हिसाब से देखा जाए तो खर्च के तुलना में ये फायदेमंद भी है, मिट्टी भी अच्छी तरह से बन जाता है और लोग इसमें अभी ध्यान भी दे रहे हैं इसमें, क्या कि समय को बचत को देखते हुए और कम समय में सुविधा जतन देखते हुए एक ही दिन में मतलब आपका जो भी फसल का छींटने का काम भी हो जाता है, जुताई भी हो जाता है और

0: बाकी समय आप दूसरे काम भी कर सकते हैं ना।
1: जी हाँ, और इसमें ये भी बात है कि आजकल के समय में पुराने समय के अनुरूप या उसके अपेक्षाकृत कम बारिश हो रही है, जिसके चलते जिसके कारण हालों से जुताई करने में जिस दिन हमारा धन

0: हो भी रहा है। तो साधु जी, जब मिट्टी की बातें करें, जैसे हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं और मिट्टी के साथ साथ बहुत सारे किसानों का ऐसे भी कुछ ऐसे शिकायतें मिलती है, जैसे कि हम फसल लगा तो रहे हैं लेकिन कुछ कुछ फसल बरसों से ठीक होते रहता है, लास्ट में कभी मुरझा जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, फिर सही नहीं हो रहा है, माने किसान का एक नुकसान हो जा रहा है, घाटा हो जा रहा है। तो इसमें क्या बीजों को दोष देंगे या फिर मिट्टी को हम दोष देंगे, क्या उसमें कुछ तैयारी करनी चाहिए?
1: जी हाँ, वो तो हम देखते ही आ रहे हैं कि कुछ सालों के बाद उस फसल उस खेत में नहीं हो पा रही है।
0: हाँ, मिट्टी का स्वरूप बदलता जा रहा है,
1: इसीलिए हम लोग इसके लिए फसल चक्कर अपनाना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा।
1: और हो सके तो हम लोग
0: मिट्टी का
1: जांच कराना होगा, उसके लिए हम मैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पास लिखित आवेदन दे करके या तो मिट्टी के सैंपल लेकर के लेकर के जाना चाहिए, जिसमें हम हमारे अमुक खेत में क्या कौन सी फसल लगाएंगे तो कौन सी खाद और कौन सी जिंक या फास्फेट बोरोन क्या जरूरत होगा उसके भरपाई लगाएंगे या तो उस खाद को डालेंगे,
0: जांच के बाद हमको जानकारी मिलती है,
1: उसके बाद ही हमको पता चलेगा। इसीलिए हम लोग को बहुत सारे किसान बोलते हैं कि अरे ये हाइब्रिड बोल के हमको दिया हुआ है, इतना अच्छा
0: ठग दिया
1: बोलता है, लेकिन हमें भी उसके लिए जागरूक होना होगा।
0: सही बात।
1: और हमें उस तरह के प्रखंडों में कृषि पदाधिकारी हैं उनसे भी संपर्क करना होगा, एवं गांव देहात में कुछ पंचायतों में दो तीन किसान मित्र भी हैं, उनसे भी सहयोग लेना चाहिए और उनसे संपर्क करना चाहिए। जी हाँ।
0: और समय समय पर चाहे वो पंचायत स्तर पर हो या फिर प्रखंड स्तर पर किसानों के लिए, चाहे वो खाद निर्माण के बारे में हो या फिर बीज निर्माण के बारे में हो या फिर किस प्रकार का खेती किया जाए इसके बारे में सब प्रशिक्षण भी दी जाती है, तो ऐसे प्रशिक्षण में किसानों को भाग भी लेना चाहिए ना?
1: जी हाँ, उसमें तो हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि हम खेती किसानी से ही अपना जुड़े हुए हैं और उसी से हमारा खान पान आमदनी चल रही है। जी है।
0: तो अगर प्रशिक्षण लेके हम लोग करेंगे तो बेहतर तरीके से खेती बाड़ी कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: अच्छा, और जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि कुछ समतल जमीन है और कुछ पठारी जमीन है, जैसे कुछ जंगली किनारे जो अपना गांव बसा हुआ है, तो ऐसे क्षेत्रों में खेती का तरीका कुछ अलग अलग होता होगा और फसल भी कुछ अलग अलग लगाते होंगे ना?
1: जी हाँ, वो हम जमीन के स्तर के आधार से ही खेती करते हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे उबड़ खबड़ है या थोड़ा
0: पठारी
1: जमीन या जंगल के सटा हुआ जमीन में हम मोटे अनाज जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो, जैसे पुराने समय से ही हम लोग जिसको हम लोग अभी कोदो मिलेट बोलते हैं, इसको हम लोग मुंडेरी में जाने बोलते हैं, वो एक तो बीमारी को भी भगा देते हैं और उससे स्वास्थ्य भी सही बने रहते हैं,
0: वैसे
1: पौष्टिक है। जैसे मड़ुआ हुआ, बजरा हुआ, राहड़ हुआ, वैसे कम पानी वाले फसल को लगाते हैं। उसके बाद नीचे समतल वाला उसमें गोड़ा धान लगाते हैं,
0: थोड़ा सा
1: कम दिनों में तैयार होने वाला, या मकई लगाते हैं, या कुछ पानी की जल जमाव नहीं होगा इसे क्षेत्र में अरुई लगाएंगे, या तो कुछ
0: कंद वाला
1: जैसे हल्दी लगाए।
0: अच्छा।
1: या तो जैसे अभी हमारे क्षेत्र में रायसिंद्र पहाड़ सुने हैं, वहाँ बहुत पहाड़ है, हल्दी के खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। इसी तरह से वैसे जमीन को चयन करते हुए खेती करने से हम कुछ सफल हो सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और जैसे पठारी क्षेत्रों में जब खेती करते हैं तो फिर वहाँ के सिंचाई व्यवस्था कुछ अलग है, ऊपर के भरोसे में रहते होंगे, या फिर सिंचाई में आपके क्षेत्र में पहले की अपेक्षा क्या बदलाव देख रहे हैं, और अभी क्या कोई सुलभ हो गया है कि अभी भी कुछ परेशानी है इस तरह का?
1: जी हाँ, सिंचाई के लिए तो हमें भी पहले से भी भगवान के भरोसे हैं, वर्षा के पानी से ही सिंचाई होते थे। हाँ। अभी थोड़ा बहुत कुआं और तालाब होने के कारण
0: सुविधा
1: हुआ है, उनमें भी कुछ लोग तो वही टूलू मशीन या तो पेट्रोल वाला उसमें लेकर के सिंचाई करते, लेकिन सभी खेतों में सिंचाई संभव नहीं हो पाएगी,
0: नहीं हो पाएगा।
1: हाँ, कुछ एक दो खेतों के लिए ही संभव हो पाती है,
0: जहाँ पर पानी की सुविधा है और उसमें आप पाइप के माध्यम से आप सिंचाई वगैरह कर सकते हैं।
1: जी हाँ, उसमें मशीन में लगा करके हम कुछ दूर तक खेतों में ले जा सकते हैं।
0: तो ग्रामीण क्षेत्र में जब खेतीबाड़ी लोग करते हैं तो छोटे छोटे कृषि यंत्र हैं उनके माध्यम से कर रहे हैं, और आजकल पहले के तुलना में जो मजदूर अपना शारीरिक मेहनत करते थे

0: और उस तरह का मजदूरी या फिर जो काम करने वाले आजकल भी वैसे ही सब मिलजुल के कर रहे हैं कि थोड़ा सा परेशानी भी कुछ हो रही है?
1: जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो सब कोई मिलजुल करके ही आज तक तो कर रहे हैं, लेकिन आगे के बारे में हम नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अभी परिवर्तनशील है तो उसके लिए तो समय ही बताएंगे, लेकिन उस समय का क्या होगा क्या नहीं, लेकिन वर्तमान समय में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आ रहे हैं। अच्छा। जरूरत पड़ने पर चलिए आज का मेरा खेत में पानी खत्म हो रहा है, आज हमको सहयोग कर दीजिए, एक दिन में खत्म हो जाएगा, उसी तरह से एक दूसरे को सहयोग की भावना से खेती निपटा बारी चलता है।
0: अच्छा अच्छा, नहीं अगर मशीनों की बात करें तो फिर मशीन अब आपके लिए जैसे आने वाले भविष्य के लिए, चाहे धान कटाई हो, धान झड़ाई हो या फिर भंडारण के लिए, तो मजदूरों की अपेक्षा थोड़ा सा आसान तो हुआ होगा अभी?
1: जी हाँ, मजदूरों के से तुलना में मशीनों से जो भी काम है, खेती ही नहीं कोई भी बार का पूरा दुनिया का काम आसान हुआ है। जैसे खेत की जुताई हुआ, फसल कटाई हुआ, झड़ने का भी, जैसे गांव-गांव में आजकल पैडल से मरने वाला एक धान झड़ने वाला मशीन भी, हाँ थ्रेसर मशीन ले लिए, उसी में अभी मोटर लगा करके दिन भर आराम से एक दिन में एक सप्ताह पिटने वाला धान भी दो तीन दिन में खत्म हो जा रहा है।
0: अच्छा, बड़े बड़े ट्रैक्टर में भी सब अभी झड़ने का काम
1: उसका, वो तो थोड़ा सा उतना सुलभ नहीं है, हाँ कुछ कुछ एक दो है अभी तक तो इसे बुला के ले जाते हैं। हाँ, हाँ। तो लेकिन उसमें क्या दिक्कत ये होती है कि आपके गांव में कितना झड़ना है। हाँ। उस हिसाब से ले जाते हैं, लेकिन वो पैडल वाला तो सुविधा है। हाँ, हर गांव में, गांव घर में है।
0: हाँ, में जगह में
1: और वो ट्रैक्टर वाला बोलने से वो आपका एक घंटा में आपका पूरा आपका खेती एक दिन में खत्म हो जाता है।
0: सब कई लोगों का,
1: कई लोगों का एक दिन में आपका गाँव का पूरा खत्म हो जाता है।
0: तो इस तरह से जैसे हम कंद वर्ग सब्जियों की बातें करें तो फिर आप लोग मिट्टी का भी चयन करते हैं, मिट्टी का जो स्वरूप देखते हुए अलग अलग फसल लगाते होंगे, तो बलुआही मिट्टी में आप अपने आसपास के क्षेत्रों में क्या क्या खेती करते हैं, जो भी कंद वर्ग सब्जी वगैरह सब है?
1: जी हाँ, बलुआही मिट्टी में हम लोग जैसे आलू लगाते हैं और शकरकंद, बहुतायत शकरकंद ही ज़्यादा लगाते हैं, और वो जो खंड वर्गीय फसल लगाते जिसमें जल जमाव नहीं हो, जल का निकासी भी जल्दी हो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: क्योंकि यदि ये खंड वर्गीय फसल है, यदि जल जमाव अधिक होगा तो उसमें सड़ने की संभावना अधिक होती है।
0: लतर भी नहीं बढ़ेंगे।
1: हाँ, और उसके खंड कम आकार का होगा या तो जमीन टाइट होगा, पानी जमा रहेगा, तो उस टाइम खंड सड़ने का आशंका ज्यादा बनी रहती है और छोटे छोटे आकार में बने रहते हैं।
0: तो इसमें क्या लगाने का तौर तरीका में क्या बदलाव देख पा रहे हैं वर्तमान समय में? क्या है कि सही कतारों में सही दूरी बनाते हुए या फिर आड़ के रूप में इस तरह का लगाते हैं, या फिर कोई नया तरीका भी अपना रहे हैं?
1: जी, पुराने समय में हर कोई छिटकाव विधि के द्वारा ही खेती होता था, कोई भी फसल तो, लेकिन आजकल सभी किसान जागरूक हो रहे हैं, जैसे जैसे समाचार पत्रों या तो यूट्यूब और किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू के द्वारा जागरूक हो रहे हैं, इसीलिए कतारबद्ध रूप से रुपाई कर रहे हैं और उसमें कम मात्रा में ही अधिक फसल हो जा रहा है। हाँ, जैसे बीजों की मात्रा कम हो गया और फसल अधिक हो गया, वो बहुत ही एक अच्छा पाल है। पहले किसान मित्रों के द्वारा गांव-गांव में इसको प्रचारित किए थे, उसके देख करके आजकल देखा देखी में सभी लोग जागरूक हो रहे हैं और उस तरह का खेती अपना रहे हैं।
0: सही बात है। तो साधु जी, आपने हमारे किसान भाइयों को कई प्रकार के मिट्टी के बारे में और लगाने के तौर तरीके और मिट्टी को उपचारित करने के लिए मिट्टी जांच क्यों जरूरी है, फसल चक्र क्यों जरूरी है और मिट्टी की तैयारी कैसे करें, इस विषय पर विशिष्ट रूप से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
1: हाँ, जोहार।
2: तो किसान भाइयों, अभी हम मिल रहे थे साधव गिलुआ जी के साथ, जो एक सफल कृषक हैं, और इस मुलाकात के पश्चात आइए मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं नागपुरी लोकगीत सुरभि पान एवं साथियों के स्वर में।

श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे उड़िया लोकगीत सुरभि फाल एवं साथियों के समर्य, और इसी लोकगीत के साथ ही आज का खेती गृहस्थी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब कमलेंदु को विदा दें, सभी को पुनः एक बार जोहार।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्य में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बाघेल ने बताया कि आज शाम मुख्यमंत्री आवास में सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने सेवानिवृत्त होने वाले कोयला कर्मियों को समय पर पीएफ और पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से एक वर्ष पहले ही उनके अभिलेखों का सत्यापन और अद्यतन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सीएमपी पीएफ मुख्यालय ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। खूंटी जिला के तोरपा से विधायक सुदीप गुड़िया ने आज एक समारोह में 7 एम्बुलेंस और 3 शव वाहनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। पूर्वी सिंहभूम जिले के रहरगोड़ा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण की मांग को लेकर आज स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।

0: देवघर जिले से पुलिस ने बड़ी आपराधिक वारदात की साजिश को विफल करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी में एक अवैध देशी पिस्तौल और एक कारतूस बरामद किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम हुआ कड़ा।

0: को उनुं पारो को दिया ने तना कुछ गार्जियन को इनका को दिया ना कड़ा जो कौन को चाहे बसर को पढ़ाओ इच्छित हुआ माई बाबू देखो इनको पढ़ाई के साथ साथ रे उनुंगो बु उनुंगे मंत को काजी को तना तो कुछ गार्जियन को इनका ओमिना को अच्छी समा समा रहो उनको कौन को समय को बर्बाद है तना स्कूल कॉलेज तो जो इन्हें थे इनका गार्जियन को हन को तिरंदाजी रे एम के तक हुआ स्वस्थ शरीर टयोचा और साथ ही साथ ना उनुंगे तबु नलको तना ची आर पार नौकरी को नमो तना तो इन मनते हो नेंद्र को आगुतना इनका अली अटकर बिना
1: तो अबेन नेन दिशा रे आयर पा नौकरियो नमो अमंती आ रूप रे अबेन बन उड़ खड़े
0: जे या या
1: अच्छा अच्छा अबेन नेना चिमिन दिने ते नेना रे आ एतोन ती आची पार्टी बन शुरू करे
0: ओ अली तो नेन हन को प्रशिक्षण ची हन को ट्रेनिंग एतो को ती आदो वर्ष 2012 11 नंबर 2012 ते लिन शुरू तडे
1: अच्छा
0: या या
1: मेंदो नेन सारा असर बिजतुन ओखना एतो को तना बन एंदो नेना ते ना तक चिमिन हो को नखरे को नमा कडा एंते नेना इन अबन बन एतो को तना जान जरूरत दो काट करो तना
0: कागे नेना उनुंग ना दो आर्द को मनिया केलोगे कुदोगे बनोगे खराब को मनिया पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नाव को मनिया मेंदो ना दो परिभाषा बदल कर के ना ना तो खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ज्ञानी मैंने लिखा इस हफ्ते ना तो उनुंग उनुंग तरह नौकरी को नमो उतना एंड या नमो तना को
1: अच्छा हाँ। अच्छा चिमिन हो को इनका को नमा कटा उनुंग उनुंग थे
0: अबु
1: सारा असर
0: सारा असर रे
1: या
0: अबु नेन जिले ते दो सारा असर रे लगभग 15-16 जन लिखा तुरंग नौकरी को नमा कटा एंड अबु ना वर्तमान रे जो कौन उनको तुरतुंग तिरंदाजी पर्सन केंद्र से कुर्साई ते दो 3 जन नौकरी को नेशनल ची राष्ट्रीय लेवल रे को चैंपियन तना दो चैंपियन को बाई हुआ को जीत के रोआ एंड एन को सर्टिफिकेट को नाम या मेडल को नाम एन सर्टिफिकेट नौकरी रे कोटा जैसे पुलिस रे नौकरी है आर्मी रे नौकरी है ची बीएसएफ रे ची सीआरपीएफ रे आरपीएफ रे असम राइफल्स रे मैन लिखा एन रे स्पोर्ट कोटा उजू है एन दो एन रे को अप्लाई एन जो प्रमाण पत्र को नमा कड़ा सर्टिफिकेट को नमा कड़ा उन मेरिट सर्टिफिकेट इनको अप्लाई इनता एन दो एन लिखाते इनता रे आको सिलेक्शन हुबाना
1: माने कजिरिया मतलब दो सारा आसर बुजा तुनी रे दैयन और दो इन रे पट्टाना मयान और दो पुलिस रियो नौकरी हुबा दियो
0: हुबा दियो या
1: अच्छा हां एन नेना सिर्फ पुलिस रे नौकरी रे हुबा अछि इटा ति आरियो नौकरी हुबा दियो
0: तगेना दो पुलिस रे सु दो कागे अबु ना सीआरपीएफ सेंट्रल पुलिस को रोको नौकरी तेने
1: अच्छा
0: बॉर्डर पुलिस फोर्स ची बीएसएफ बूम तक हुआ एनकोरो नौकरी ना होता ना
1: अच्छा
0: आईटीबीपी को मने इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स एंड डिफेंस लाइन रो नौकरी को ना होता ना
1: अच्छा
0: एंते ना इनकम टैक्स को करियो बैंक को रियो रेलवे को रियो नौकरी को ना होता ना
1: मने नेन सारा असर
0: बेजा तुझे थे या
1: अच्छा एंदो अबिना जानकारी रे ओकन ओकन हनको ची कुआ हनको जे कुयन को नमा कडा इनकु अन तुम दो बन चिरगल तरे
0: या या ना चिलके अबु मानतन मंगल सिंह चंपिया अकिन रोले रे की नौकरी तना
1: अच्छा
0: भारतीय रेलवे रे एन लिखाते हरीश चंद्र केराई अकिन आर्मी रे की नौकरी तना
1: अच्छा
0: कगेंद्र बुडुली अकिनो का आर्मी रे की नौकरी तना रेंसो पूर्ति अकिनो आर्मी रे की नौकरी तना एंड माई रिमिल बुडुली अकिन रेलवे रे की नौकरी तना अंदो ना अबु बु नुतुम तबु आयुम चिरगली तन गया कोमलिका बारी अकिन टाटा स्टील रे किनो करित ने
1: अच्छा अकिन दो कोमलिना दो
0: अकिन कोमलिका बारी
1: कोमलिका बारी
0: या
1: अकिन दो सारा असर बजा तुनी दे छिना
0: या सारा असर बजा तुनी ना जमीन नुतुम लिन जगर किडा
1: या या
0: इनको सबिन सारा असर बजा तके को नोकरी को नाम सिका करा
1: नाम सिका करा
0: या या
1: मेन दो अबेन एतो कोतन कोयाते दो चिमिन हो
0: ना जों दो2021
1: अच्छा
0: एक अवसर लिंग केंद्र रे ते नेन इनुंगे ते
1: अच्छा अच्छा
0: हां
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱮᱱᱨᱮ ᱥᱤᱨᱯᱷ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱮᱛᱚ ᱠᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱦᱚᱵᱚᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱡ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱤᱝᱜᱟ ᱟᱯᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱮᱸᱜᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱤᱧᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟ ᱫᱮᱸᱜᱟ ᱠᱚᱛᱮ ᱦᱚᱵᱚᱜ ᱟᱡᱚ ᱠᱤ ᱱᱮᱱᱟᱭᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱟᱭᱟᱨᱯᱟ ᱫᱮᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱮᱱᱛᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱮᱭᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ ᱤᱝᱜᱟ ᱟᱯᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱮᱸᱜᱟ ᱛᱚ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱯᱟᱞᱮ ᱱᱮᱱ ᱩᱱᱩᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱭᱟ ᱤᱝᱜᱟ ᱟᱯᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱵᱚᱜ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱮᱱᱨᱮᱱᱟᱝ ᱟᱠᱚ ᱱᱮᱱ ᱛᱤᱨᱚᱱᱫᱟᱡᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱩᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱮ ᱟᱱᱮ ᱩᱱᱩᱝ ᱨᱮᱠᱚ ᱠᱩᱞ ᱠᱚᱠᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱤᱝᱜᱟ ᱟᱯᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱚᱨᱥᱟ ᱱᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱚᱨᱥᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱦᱚᱱ ᱚᱠᱚᱱᱤ ᱵᱩ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱮᱱᱤ ᱰᱤᱥᱴᱤᱠ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱨᱮ ᱡᱤᱞᱟ ᱥᱛᱟᱨᱤ ᱛᱤᱨᱚᱱᱫᱟᱡᱤ ᱯᱨᱚᱛᱤᱡᱳᱜᱤᱛᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱮ ᱨᱟᱡᱟᱥᱛᱟᱨᱤ ᱯᱨᱚᱛᱤᱡᱳᱜᱤᱛᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱯᱨᱚᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱟᱪᱷᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱤᱝᱜᱟ ᱟᱯᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱱ ᱥᱤᱴᱤᱭᱮ ᱠᱚ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸᱥᱞᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱡᱟᱭ ᱠᱚᱠᱟ ᱪᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱱᱮᱱ ᱩᱱᱩᱨᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱨᱯᱟ ᱵᱤᱱ ᱵᱟᱲᱟᱣᱟ ᱟᱨᱯᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱤᱱᱟᱨᱥᱟᱭᱟ ᱱᱮᱱ ᱤᱝᱜᱟ ᱟᱯᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱱᱮᱱ ᱡᱤᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱮᱱ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱵᱤᱱ ᱠᱚᱥᱤᱥ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱨᱥᱟ ᱫᱚ ᱤᱝᱜᱟ ᱟᱯᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱛᱮ ᱦᱚᱵᱟᱱᱟ ᱤᱝᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱠᱳᱪ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱪᱟᱠ ᱠᱚ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱞᱮ ᱢᱳᱴᱤᱵᱷᱮᱴ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟᱞᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱩᱱᱩᱝ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱠᱟ ᱨᱮᱡᱟᱞᱴ ᱮᱢᱮᱭᱟ ᱱᱮᱞᱠᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱮᱞᱠᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱤᱦᱤᱝᱟᱜᱼᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱱᱚᱨ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱱᱮᱞᱟᱛᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱞᱤᱧ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱯᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱝᱡᱟᱱ ᱩᱴᱮᱡᱱᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱥᱟᱵ ᱠᱮᱭᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱵᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱚᱭ ᱠᱚ ᱚᱠᱚ ᱠᱚ ᱮᱞᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱡᱤᱭᱚ ᱠᱚ ᱮᱞᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱝᱜᱟ ᱟᱯᱚ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱩᱨᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱨᱟᱥᱟᱣᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱟᱹᱴᱤᱠᱤ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱱᱟᱢ ᱴᱷᱚᱣᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱮᱛᱚᱞ ᱱᱟᱭ ᱛᱮᱱᱟᱝ ᱟᱦᱚ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱵᱚ ᱮᱱᱫᱚ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱥᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟ ᱵᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱪᱮᱞᱮᱠᱮ
0: ᱫᱮᱠᱤ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱯᱟᱜ ᱵᱚ ᱴᱟᱭᱤᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱤᱴᱤᱭᱮ ᱡᱚᱱᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱚᱣᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱟᱨ ᱫᱚᱠᱚ ᱥᱤᱫᱩᱵᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ
1: ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱡᱮ
0: ᱭᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱩᱱᱩᱝ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱥᱤᱢ ᱥᱟᱺᱰᱤ ᱪᱤ ᱚᱭ ᱠᱚ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨ ᱠᱮᱛᱮ ᱠᱩᱞᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨ ᱠᱮᱛᱮ ᱡᱤᱱᱫᱟᱜᱤ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱡᱤᱞᱩᱛᱮ ᱡᱤᱞᱩ ᱡᱚᱢ ᱠᱮᱛᱮ ᱥᱩᱭ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱤᱱᱫᱟᱜᱤ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱩᱱᱩᱝ ᱠᱚ ᱱᱮᱱ ᱛᱤᱨᱚᱱᱫᱟᱡᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱨᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱚᱰᱟᱨᱱ ᱮᱭᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱮᱢ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱱ ᱛᱮ ᱵᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱥᱟᱨᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨ ᱥᱟᱨᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱪᱤ ᱯᱚᱱ ᱫᱚᱥᱛᱩᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱵᱩ ᱵᱟᱜᱮ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱜᱟᱨ ᱮᱱ ᱥᱟᱨᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱨᱮᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱟᱥᱟᱨ ᱟᱥᱟᱨ ᱯᱟᱨᱮ ᱢᱚᱰᱟᱨᱱ ᱯᱟᱨᱮ ᱪᱤ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱵᱟᱫᱟᱵᱟᱫᱤ ᱨᱮᱵᱚ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱮᱱ ᱯᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱜᱟᱨ ᱮᱱ ᱵᱟᱫᱟᱵᱟᱫᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱨᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱥᱟᱵ ᱠᱮᱛᱮ ᱟᱨᱯᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱷᱟᱥᱮᱱᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱨᱯᱟ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱮᱭᱟ
1: ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱵᱟᱫᱟᱵᱟᱫᱤ ᱨᱮ ᱟᱫᱩᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱡᱟᱛᱩᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱫᱟᱵᱟᱫᱤ ᱨᱮ ᱟᱫᱩᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱨᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱮᱴᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱠᱟᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱛᱚ ᱟᱞ ᱫᱚᱞᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧᱮᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱜᱵᱟᱜ ᱮᱱ ᱠᱤᱴ 6,500 ᱡᱚᱝ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱥᱟᱨᱟ ᱟᱥᱟᱨ
1: ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱯᱮ ᱨᱮ ᱢᱟᱫ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ
0: ᱢᱟᱫ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱤᱞᱟ ᱥᱛᱚᱨ ᱡᱚᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱛᱥᱟᱦᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮᱠᱚ ᱟᱭᱳᱡᱚᱱᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱨᱯᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱ ᱢᱟᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱟᱨ ᱪᱤ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨ ᱟᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱨᱯᱟ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱥᱛᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱫᱟᱵᱟᱫᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱤᱰᱤ ᱤᱪᱤᱭᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ 6,000 7,000 ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱢᱚ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱠᱟᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱮᱫᱟ
0: ᱤᱧᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱜᱟᱨᱡᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱤᱝᱠᱟᱹ ᱠᱚ ᱩᱲᱩᱭᱮ ᱪᱮ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟ ᱪᱤᱢᱮᱱ ᱡᱟ ᱠᱟᱫᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱞᱟ ᱠᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱟᱞᱟ ᱠᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟ ᱪᱤᱢᱮᱱ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱵᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱭᱟ ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱛᱤᱨᱚᱱᱫᱟᱡᱤ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱟᱭᱤᱴ ᱠᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱟᱜ ᱠᱟᱨᱤᱝ ᱠᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱸᱰᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱠᱮᱱ ᱠᱚᱭ ᱛᱮ ᱢᱚᱡᱫᱩᱨᱤ ᱠᱮᱱ ᱠᱚᱭ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱟᱵᱚ ᱛᱤᱨᱚᱱᱫᱟᱡᱤ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱫᱚᱠᱚ ᱮᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱮᱭᱟ ᱮᱭᱟ
1: ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱮᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱱᱮᱱ ᱠᱟᱡᱤᱵᱮᱱ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱭᱟᱨ ᱵᱩᱲᱦᱟᱹ ᱵᱩᱲᱦᱤ ᱠᱚᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱦᱮ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱮᱛᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱤᱧ ᱴᱚᱨ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱤᱧ ᱜᱚᱡ ᱛᱟᱵᱤ ᱠᱮ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱰᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱵᱟᱵᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱤᱠᱟᱨᱤ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱦᱮ
0: ᱥᱤᱠᱟᱨᱤ ᱟᱭᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱟᱡᱤ
1: ᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱥᱮᱵᱟᱭ ᱠᱚᱛᱮ ᱵᱟᱵᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ
0: ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱢᱮᱱ ᱪᱤᱡᱟ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠ ᱟᱸᱰᱚ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱱᱟ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱮ ᱠᱟᱡᱤᱨ ᱫᱚ ᱜᱨᱩᱯᱤᱝ ᱪᱤ ᱢᱤᱫ ᱟᱨ ᱛᱚᱲᱮ ᱡᱩᱣᱮ ᱨᱮᱸᱜᱟ ᱛᱟᱛᱮᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱚᱲᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱫᱤᱱᱥᱤ ᱟᱵᱷᱭᱟᱥ ᱛᱮ ᱵᱟ ᱫᱤᱱᱥᱤ ᱯᱨᱮᱠᱴᱤᱥ ᱛᱮ ᱵᱟ ᱱᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱵᱟᱫᱟᱵᱟᱫᱤ ᱟᱥᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱟᱵᱷᱭᱟᱥ ᱜᱮ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱜᱮ
1: ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱠᱟᱡᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱞᱮᱱᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱚ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱟᱛᱳᱨᱮ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱤᱴᱠᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱩᱧ ᱠᱚ ᱚᱭ ᱠᱚ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱨ ᱛᱮ ᱪᱤᱠᱟ ᱜᱮ
0: ᱠᱟᱜᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱫᱟᱵᱟᱫᱤ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱥᱛᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱤᱡᱳᱜᱤᱛᱟ ᱪᱮ ᱵᱟᱫᱟᱵᱟᱫᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ
1: ᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟ
0: ᱮᱭᱟ ᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱫᱟᱵᱟᱫᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱯᱨᱚᱛᱤᱡᱳᱜᱤᱛᱟ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱩᱱᱩᱝ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱟᱥᱟᱨ ᱜᱮ ᱵᱟᱵᱟᱨᱤ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱛᱟᱛᱮ ᱵᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱨᱮ ᱨᱟᱹᱯᱩᱲᱤᱭᱟᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱥᱟᱨ ᱛᱮ ᱱᱟᱧ ᱛᱚᱲᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱ ᱥᱟᱝᱜᱟᱨ ᱟᱥᱟᱨ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱟᱦᱵᱟᱣ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱥᱚ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱚᱠᱚᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱞᱟᱝ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱦᱚᱠᱚ ᱠᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱸᱜᱟ ᱟᱯᱚ ᱠᱚ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱠᱚ ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱠᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱮᱛᱚ ᱫᱟᱭ ᱪᱤᱠᱟ ᱜᱮ
0: ᱭᱟ ᱮᱥᱩ ᱵᱟᱹᱱᱤᱝ ᱠᱚᱱᱚ ᱚᱱᱮᱱᱛᱟ ᱤᱱᱟ ᱠᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱮᱛᱚ ᱫᱟᱭ
1: ᱦᱟᱸ
0: ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱠ ᱪᱤᱪᱤᱞᱠᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱞᱮ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱳᱯᱮᱱ ᱠᱮᱴᱮᱜᱚᱨᱤ ᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱩᱱᱩᱢ ᱫᱟᱭᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱮᱥ ᱡᱤ ᱮᱯᱟᱭ ᱞᱮ ᱢᱮᱱᱮ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱚᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱠᱩᱞ ᱜᱮᱢᱥ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱚᱯ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱜᱮᱢᱥ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱚᱯ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱩᱱᱩᱢ ᱛᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱱᱮᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱩᱱᱩᱢ ᱨᱮ ᱟᱢ ᱵᱟᱜᱮ ᱪᱮᱢ ᱦᱤᱛᱮᱰᱮᱢ ᱤᱰᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱮᱱᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱮ ᱵᱟᱣ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱠᱩᱞ ᱱᱮᱥᱱᱮᱞ ᱢᱩᱱᱩᱝ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱢᱩᱱᱩᱝ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱮ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ
1: ᱚᱦᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ
1: ᱫᱚ ᱠᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱤᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ
0: ᱤᱱᱩᱝ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱤᱱᱩᱝ ᱫᱟᱭᱮ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱟᱨᱯᱟ ᱫᱟᱭ ᱠᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱟ ᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱟᱱ ᱞᱚ ᱱᱮᱥᱱᱮᱞ ᱟᱥᱛᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱫᱟᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱮᱱᱨᱮ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱰᱮᱞ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱟ ᱟᱭ ᱛᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱠᱟ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱟ ᱮᱢᱟᱢᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ
1: ᱠᱟᱭ ᱢᱤᱭᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤ
0: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱢᱟᱱ ᱞᱮ ᱟᱢ ᱠᱟᱢ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱚᱞᱤᱢᱯᱤᱠ ᱛᱟᱠ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱴᱩᱨᱱᱟᱢᱮᱱᱴ ᱮᱢ ᱩᱱᱩᱝᱭᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱩᱲᱩᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱜᱟᱨᱟᱱᱴᱤ ᱠᱟᱞᱤᱝ ᱠᱟᱡᱤ ᱫᱟᱭ ᱪᱤ ᱟᱡ ᱠᱟ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱱᱟᱢᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱡᱚᱝ ᱫᱚ ᱤᱭᱟ ᱤᱝᱠᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱠᱟᱢ ᱥᱮ ᱠᱟᱢ ᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱡᱚᱝ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱛᱮ ᱦᱩᱵᱟᱱᱟ
1: ᱦᱩᱵᱟᱱᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱟᱭᱩᱢ ᱠᱮᱭᱟᱛᱮ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱠᱚ ᱟᱭᱟᱨᱯᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱪᱤ ᱱᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱱᱟᱞᱟᱣ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱠᱨᱤᱭᱚ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱟᱜᱞᱟ ᱢᱩᱞᱟᱠᱟᱛ ᱟᱞᱟᱝᱼᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱚ ᱤᱱᱠᱩ ᱮ ᱪᱤ ᱤᱱᱠᱩᱞᱚᱜ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱱᱟᱛᱮ ᱟᱭᱟᱨᱯᱟ ᱦᱚᱨᱟ ᱞᱟᱝ ᱩᱫᱩᱵᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱤᱱᱠᱩᱞᱚᱜ ᱢᱩᱞᱟᱠᱟᱛ ᱮᱨᱤᱧ ᱢᱮᱱ ᱨᱮᱫᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱥᱩᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱮ ᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱤ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱦᱚᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱩᱵᱟᱹᱱᱤ ᱟᱵᱮᱱ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱪᱤᱠᱟᱱ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱵᱮᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱤ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱫᱚ ᱩᱱᱩᱝ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱤᱨ ᱢᱚᱱᱚᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱤ ᱦᱚᱢᱚ ᱵᱩᱜᱤᱛᱮ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱪᱤ ᱯᱤᱴ ᱵᱩᱜᱤᱛᱮ ᱴᱟᱭᱤᱠᱟᱱᱚᱜ ᱪᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱩᱫ ᱠᱟᱵᱚ ᱱᱩᱝᱮ ᱡᱟᱱ ᱩᱱᱩᱝ ᱵᱩᱱᱩᱝ ᱤᱱᱟ ᱮᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱠᱮᱛᱮ ᱢᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱮᱛᱮ ᱟᱨᱚ ᱮᱱ ᱪᱤᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱮ ᱥᱩᱫᱷᱟᱨ ᱠᱮᱛᱮ ᱟᱨᱯᱟ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱱᱟᱢᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱮᱠᱟ ᱩᱱᱩᱝ ᱠᱮᱠᱚ ᱟᱨᱚ ᱡᱟᱱ ᱟᱨᱠᱤ ᱰᱤᱭᱮᱱ ᱨᱟᱥᱤ ᱪᱤ ᱥᱤᱢ ᱥᱩᱠᱩᱨᱤ ᱪᱤ ᱡᱤᱞᱩ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱠᱚᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱠᱚ ᱪᱟᱠᱟᱰᱮᱱ ᱪᱟ ᱟᱨᱚ ᱟᱨᱯᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱚᱠᱚ ᱩᱲᱩᱜ ᱵᱤᱴᱟᱭ ᱪᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱜᱤᱛᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱮ ᱦᱚᱵᱟᱣᱟ ᱵᱩᱜᱤᱛᱮ ᱥᱮᱭᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱤᱱ ᱛᱮ ᱵᱟᱣᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱟᱵᱚ ᱟᱨᱯᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱟᱨᱯᱟ ᱵᱟᱲᱟᱣᱟ
1: ᱵᱟᱲᱟᱣᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱟ ᱨᱮᱱ ᱫᱮᱥᱚ ᱯᱩᱨᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱢᱟ
0: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम विकास योजना पर आधारित सन्मार्ग। श्रोताओं कार्यक्रम सन्मार्ग पर हम आज चर्चा करेंगे विकास की राह पर भारत, इस विषय पर। श्रोताओं भारत आज विश्व के सबसे तेजी से विकसित हो रहे देशों में से एक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश ने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीकी, आधारभूत संरचना और डिजिटल क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज भारत केवल अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में ही आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति ही नहीं, विकास का वास्तविक उद्देश्य है समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, अवसरों की समानता सुनिश्चित करना और सभी को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। इसी सोच के साथ भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। आज देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है और कई कृषि उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है। आधुनिक कृषि उपकरणों और वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में भी कार्य हो रहा है। विकास की इस यात्रा में आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण योगदान है। श्रोताओं देश भर में सड़कों, राजमार्गों, रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों का तेजी से विस्तार हो रहा है। बेहतर परिवहन व्यवस्था न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति देती है, बल्कि लोगों के जीवन को भी आसान बनाती है। आज भारत में आधुनिक एक्सप्रेसवे, वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल सेवाएं और विकसित हवाई नेटवर्क देश की प्रगति के प्रतीक बन चुके हैं। डिजिटल क्रांति भारत के विकास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रोताओं इंटरनेट और मोबाइल तकनीकी ने देश को नई दिशा प्रदान की है। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं ने आम नागरिकों के जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है। आज गांवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंच रही है, जिससे विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार होती है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करने का प्रयास हो रहा है। उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में भी भारत अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। देश के युवा आज विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा और नवाचार के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया है। टीकाकरण अभियान और स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण ने स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत ही अधिक प्रभावी बनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी के बिना विकास की कल्पना अधूरी है। श्रोताओं आज महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान, खेल, उद्योग और राजनीति सहित हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है। आत्मनिर्भर महिलाओं का योगदान राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण
भूमिका भी निभा रहा है। भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है और यही युवा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कौशल विकास, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देकर युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज भारतीय युवा रोजगार खोजने के साथ साथ रोजगार देने वाले उद्यमी भी बन रहे हैं। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां विश्व का ध्यान आकर्षित कर रही है। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। चंद्रयान और अन्य अंतरिक्ष मिशनों ने भारत की वैज्ञानिक क्षमता को नई पहचान दी है। यह उपलब्धियां न केवल वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक है बल्कि देश के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना समय की मांग है। स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियानों के माध्यम से भारत एक हरित और टिकाऊ भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हालांकि विकास की राह में अभी भी अनेक चुनौतियां मौजूद हैं। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था, विविधता में एकता और नागरिकों का संकल्प है। यही शक्ति हमें चुनौतियों से लड़ने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। यह यात्रा केवल सरकार की नहीं बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही सफल होगी। जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेगा तब विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा। तो श्रोताओं, यही कहा जा सकता है कि विकास की राह पर भारत आत्मविश्वास, नवाचार और जन भागीदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह यात्रा केवल आर्थिक समृद्धि की नहीं बल्कि एक ऐसे भारत के निर्माण की यात्रा है जहां हर नागरिक को अवसर, सम्मान और बेहतर जीवन मिले। तो आइए हम सभी विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वार्ता विकास की राह पर भारत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आज हम
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहां बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे भक्तो था तो घर आई ने हमरे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
8: नितुम बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर मिना यापा मैं रिया तपा मैं रिया वाह बेटा निका
9: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितमई कोड़ा मुनी में बुनियादी ने बागिया तो कि दुना से आरती कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तम दुर्गम गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बको को काको मेल में
10: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम ते ना आप ही लेता ना।
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आएं आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: के लिए है। इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: और इन संदेशों के बाद श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें मिशन वात्सल्य योजना पर। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना का लाभान्वित किया जा सकता है। श्रोताओं, यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार सुरक्षा

0: माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 और एक नंबर है 9090700489 पर आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और आप श्रोताओं आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: नमस्कार
0: गरिमा जी, आज के हमारे सन्मार्ग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब और क्यों की गई थी?
1: धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ बोलने का मौका मिल रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लोगों को पहुंचाना, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना था और भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना। इसके अंतर्गत डिजिटल साक्षरता, ई गवर्नेंस और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया।
0: गरिमा जी, डिजिटल इंडिया के परिकल्पना को आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कैसे देखती हैं?
1: डिजिटल इंडिया योजना सिर्फ एक योजना ही नहीं है, बल्कि एक सोच है जिसमें हर नागरिक तक तकनीकी पहुंच को पहुंचाया जा रहा है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में हमारा काम है ऐसे सरल और सुरक्षित एप्स और पोर्टल बनाना जिससे कि आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाया जा सके। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो डिजिटल इंडिया अभियान एक बहुत ही प्रेरणादायक और संभावनाओं से भरा कदम है। यह न केवल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है, बल्कि इसमें तकनीकी पेशेवरों के लिए बहुत से अवसर भी छिपे हैं, जैसे अधिक रोजगार के अवसर, इनोवेशन की ज़रूरत, राष्ट्र निर्माण के में योगदान, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री की बड़ी पार्टनरशिप्स जैसे NIC, इन्फोसिस, TCS आदि के साथ काम करके इंजीनियर्स को कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में काम करने का मौका मिलता है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, IoT एटसेट्रा।
0: आपने बहुत ही अच्छी बात कही। अच्छा, आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकती हैं जहां आम लोगों ने डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाया है या उठा रहे हैं?
1: आज भीम ऐप और UPI से अब कोई भी बिना कैश के पेमेंट कर सकता है। डिजी लॉकर में स्टूडेंट अब अपनी मार्कशीट को सुरक्षित रख सकते हैं। उमंग ऐप पर पेंशन, गैस सब्सिडी जैसे 100+ सेवाएं एक ही क्लिक पर मिल जाती है। ये सब हमारी टीम जैसे इंजीनियरों की मेहनत और जनता की समझदारी का नतीजा है।
0: अच्छा गरिमा जी, आपने ऐप्स और पोर्टल्स के बारे में तो जिक्र किया ही, तो हमें यह भी बता दें कि उसके पीछे की टेक्निक क्या होती है?
1: ऐप्स और पोर्टल्स बनाने के पीछे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें कई टूल्स, लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो जब आप किसी ऐप पर क्लिक करते हैं तो वह ऐप एक सर्वर से जुड़ जाता है जहाँ डेटा मौजूद होता है, और हम इंजीनियर इसी बात का ख्याल रखते हैं कि ऐप तेज चले और सुरक्षित हो और मोबाइल या कम स्पीड वाले नेटवर्क में भी अच्छे से काम करें। इसके लिए हम क्लाउड टेक्नोलॉजी, APIs, डेटा इनक्रिप्शन जैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोविन पोर्टल जिससे आपने वैक्सीन लगवाई होगी। यह एक बड़ा डिजिटल प्रोजेक्ट है जिसमें फ्रंट एंड में एंगुलर, बैक एंड में जावा, स्प्रिंग बूट, डेटाबेस में PostgreSQL, क्लाउड होस्टिंग में AWS

0: सिक्योरिटी में OTP कैप्चा SSL का इस्तेमाल किया गया है।
1: आपने बहुत ही रोचक जानकारी हमें दी, लेकिन हम यह जानना चाहेंगे कि इस कार्य में मुश्किलें भी बहुत आती होंगी।
0: बिल्कुल, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है डिजिटल साक्षरता की कमी। सभी लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल एक समान रूप से नहीं कर पाते। लोगों को OTP, फिशिंग जैसे साइबर खतरे समझाने और उनसे सावधान रहने के लिए जागरूक करना जरूरी है। नेटवर्क और डेटा कनेक्टिविटी की समस्या, खासकर ग्रामीण इलाकों में तेज इंटरनेट की कमी भी एक बड़ी बाधा है। इन सभी चुनौतियों को हल करने के लिए सरकार और तकनीकी संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान और स्थानीय भाषाओं में डिजिटल समर्थन जैसे कदम शामिल हैं। अन्य प्रमुख चुनौतियां, गांव में अब भी कई लोग स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते, खासतौर पर महिलाएं और बुजुर्ग, इन्हें तकनीकी से जोड़ना होगा। दूसरा, साइबर फ्रॉड और हैकिंग से सुरक्षा में के लिए साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी से कुछ पारंपरिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन इससे नए अवसर भी पैदा होंगे।
1: आज डिजिटल इंडिया के भविष्य को आप कैसे देखती हैं?
0: मैं डिजिटल इंडिया के भविष्य को बेहद संभावनाओं से भरा हुआ देखती हूँ। यह सिर्फ तकनीकी विकास की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभियान है जो समाज के हर वर्ग को जोड़ने और सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है। आने वाले समय में डिजिटल सेवाएं और आसान होंगी, जिससे लोगों को सरकार से जुड़ी सुविधाएं घर बैठे मिलेंगी। ऑनलाइन
1: शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गरिमा जी से, और इसी के साथ हमारा आज का सन्मार्ग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:55 हो रहे हैं। आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र। क्या आप कोई प्रेरणादायक उदाहरण हमारे साथ

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये देख कैसे
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना
6: आरबीआई कहता है
7: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है भैया सब ऊपर वाले की दया है सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
7: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ने का किया फैसला। भाजपा का दावा विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का राज्य के विभिन्न जगहों पर हुआ स्वागत। कहा भाजपा के लिए उज्जवल भविष्य लेकर आएगी झारखंड की जमीन। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का किया उद्घाटन। हर नागरिक से की राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया अभियान का हिस्सा बनने की अपील। 12 से 15 जून के बीच राज्य में मानसून के प्रवेश की संभावना। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की जताई आशंका। और झारखंड के युवा पहलवान अनूप कुमार ने उत्तर प्रदेश में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बाघेल ने बताया कि आज शाम मुख्यमंत्री आवास में सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है।
11: हाँ हाँ मुख्यमंत्री तो हमारे सबके नेता हैं भाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा को नेता कहे लेकिन गठबंधन के भी नेता हैं हमें तो सभी हमारे जितने 56 विधायक हैं सबके बैठक बुलाए हैं। शाम को हम लोग भी उपस्थित रहेंगे। जब सारे विधायक रहेंगे सारे गठबंधन के नेता लोग रहेंगे क्लियर है दोनों सीटें हम जीतेंगे।
7: इधर भाजपा के नेता भानु प्रताप शाही ने दावा किया कि राज्यसभा की दूसरी सीट उनकी पार्टी ही जीतेगी क्योंकि विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में हैं।
12: मंत्री संपर्क में आप विधायक के बात बोलते हैं तो तीन को मंत्री का नाम हम बता देंगे जो हम लोगों से संपर्क में। तो हेमंत जी को भी सलाह देता हूँ मित्रवत कि भाई बच जाओ नहीं तो ये काला नाग ऐसा डसेगा ना कि कहीं के लायक नहीं रहोगे। लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि झारखंड के चारों तरफ कमल खिल गया है। झारखंड में कमल खिलाना बाकी।
7: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा के लिए झारखंड की जमीन निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य लेकर आएगी। पत्रकारों से बातचीत में आज श्री नवीन ने दोहराया कि भाजपा ने ही झारखंड राज्य गठन के लिए संघर्ष किया और वही इसे संवारेगी भी।
13: रांची मेरे लिए दूसरा घर है और भाजपा के इस गढ़ में फिर से कमल कैसे उसी स्वरूप में खिले उसके लिए मुझे संकल्पित होना था। कार्यकर्ताओं ने जिस

0: अरसे उत्साह के साथ हम लोग के साथ संवाद किया। मैं मानता हूँ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें फिर से उसी प्रकार से हम मजबूत करने में सफल होंगे।
1: इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, इस दौरे से कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं।
2: राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड के प्रवास में है और निश्चित रूप से संगठन को, कार्यकर्ताओं को और युवा कार्यकर्ताओं को काफी प्रेरणा मिल रहा है। काफी उत्साहित है कार्यकर्ता और आने वाले दिनों में उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से झारखंड के भविष्य के प्रति अपना योगदान और अच्छे ढंग से हो सकेगा।
1: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का उद्घाटन किया। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में श्री सेठ ने कहा कि फिट इंडिया केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का राष्ट्रीय आंदोलन है। उन्होंने हर नागरिक से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे ने कहा है कि झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत महागामा में कांग्रेस के बीएलए एवं कार्यकर्ता सक्रिय रूप से मतदाता सूची के सत्यापन में जुटे हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि बीएलओ के घर आने पर सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। हजारीबाग स्थित विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए एमबीए और बीबीए पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एमबीए के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तथा बीबीए के लिए 5 जुलाई निर्धारित की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के भारतीयों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि इससे गरीबों का जीवन प्रभावित होगा।
4: क्या बढ़ जाएगा पेट्रोल गैस का दाम, एलपीजी का दाम, जबकि क्रूड ऑयल नीचे की ओर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरी हैं, उसके बावजूद बढ़ोतरी है, तो पूछिए जो सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, गरीबों का खून चूसने पर आमादा है, दो चार उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सरकार चला रहे हैं, उनका कर्ज माफ कर रहे हैं।
1: इधर भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अन्य देशों के मुकाबले अभी भी भारत में घरेलू गैस काफी कम कीमत पर मिल रही है।
5: उनको एक एलपीजी घरेलू उपभोक्ता को बेचने में 870 रुपए प्रति सिलेंडर का नुकसान हो रहा है, तो एक छोटी सी कोशिश है इस भरपाई को करने की, क्योंकि इकोनॉमी पे प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अगल बगल के देशों में, महाशक्तियों में भी जहां अभी गैस के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, हमने बहुत मामूली बढ़ोतरी की है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थितियां बेहतर होंगी, हम ये जो है प्राइसेस जो है स्टेबिलाईज हो

0: खूंटी जिले के तोरपा से विधायक सुदीप गुड़िया ने आज एक समारोह में 7 एम्बुलेंस और 3 शव वाहनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। संभावना जताई जा रही है कि 12 से 15 जून के बीच राज्य में मानसून दस्तक दे सकता है। झारखंड के युवा पहलवान अनूप कुमार ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता के 45 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी के प्रशिक्षु अनूप ने सभी मुकाबले तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीतते हुए खिताब अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ने का किया फैसला। भाजपा का दावा, विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राज्य के विभिन्न जगहों पर हुआ स्वागत। कहा, भाजपा के लिए उज्जवल भविष्य लेकर आएगी झारखंड की जमीन। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का किया उद्घाटन। हर नागरिक से की राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया अभियान का हिस्सा बनने की अपील। 12 से 15 जून के बीच राज्य में मानसून के प्रवेश की संभावना। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की जताई आशंका। और झारखंड के युवा पहलवान अनूप कुमार ने उत्तर प्रदेश में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
4: वो कहाँ है?
3: मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: खतरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: प्रस्तुत है जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
1: विश्व पर्यावरण सप्ताह 2026 के अवसर पर जमशेदपुर वन प्रमंडल एवं एलिफेंट प्रोजेक्ट के संयुक्त तत्वाधान में दो मुहानी नदी तट के क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में वन विभाग के अधिकारियों, वन कर्मियों, स्वयं सेवकों तथा स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर क्षेत्र की साफ सफाई में योगदान दिया। इस दौरान DFO सबाल अमंसारी ने लोगों से नदियों को स्वच्छ और पर्यावरण को संरक्षित रखने की अपील की।
2: विश्व पर्यावरण सप्ताह 2026 के अवसर पर हम लोग आज सफाई अभियान का कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग दो मुहाने से लेकर के डोबो पुल तक सफाई अभियान, जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे जितने भी प्लास्टिक वगैरह पड़े हुए हैं और जितने भी कचड़े पड़े हुए हैं सभी को उठाने का कार्य कर रहे हैं।
1: जमशेदपुर के GRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 15वीं झारखंड स्टेट सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप का समापन हो गया। प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। प्रतियोगिता का आकर्षण दो बच्चों की मां सोनल मिश्रा रही, जिन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं में 4 पदक जीते। सोनल ने कहा कि बच्चों के साथ तैराकी शुरू करते समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें पदक भी मिलेगा।
3: 400 मीटर फ्री स्टाइल में मैं सेकंड पोजीशन लाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब अपनी खुशी बयां नहीं कर पा रही हूँ। बच्चे आते थे पुल में, इसीलिए मैंने भी तैरना शुरू कर दिया था। 1 घंटे बैठने से बेटर है कि मैं तैर लूँ। तब कभी सोचा नहीं कि यहाँ तक पहुँच जाऊंगी।
1: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण

0: करने पर पूर्वी सिंहभूम के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के युवा मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को देश के विकास और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण बता रहे हैं।
1: मोदी गवर्नमेंट के 12 साल के कार्यकाल से मैं बहुत खुश हूँ और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से युवाओं के लिए स्किल इंडिया और मुद्रा लोन जैसे योजनाओं से लोगों को आगे बढ़ने का एक रास्ता खुल रहा है, जिससे हमारा देश और तेजी से आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का जो मिशन है वो अच्छी तरह से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।
0: जमशेदपुर के सेंटर फॉर एक्सीलेंस में ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल और निशान के संयुक्त तत्वधान में आयोजित सप्ताहव्यापी थिएटर आर्ट एंड क्राफ्ट कार्यशाला 2026 का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में कार्यशाला के दौरान तैयार किए गए कस्टम मास्क, स्टेज क्राफ्ट और अन्य कलात्मक सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।
2: निशान संस्था और ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल मिलकर के एक 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसका विषय था जो नाटक के अंदर में आर्ट एंड क्राफ्ट का जो उपयोग होता है उसके बारे में। अभिनेता को लोग देखते हैं, लेकिन उस अभिनेता के अभिनय को निखारने के लिए जो पीछे काम होता है बैक स्टेज में, उसके लिए वर्कशॉप था।
0: बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ग्रामीण किसानों को उनके आमों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन ने इस वर्ष भी झारखंड के आम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
3: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा खबर।
4: बहुत तेजी से बदल चुका है। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे न केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है। तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप
5: देखिए। भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हुए खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं, जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है और 100 करोड़ से ज़्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास।
4: शायद कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं।
5: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी

0: सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है। और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था। आज ये करने की जरूरत नहीं है, आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है। आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल।
1: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा, हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इंपैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है
1: जी।
0: और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पहुँचने में बहुत कठिनाई है, जहाँ शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया, इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल
1: उपलब्धि है
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया, उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो AI सपोर्टेड, AI ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहाँ पे AI कैसे मदद करता है कि AI टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, AI टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर

0: करना है, इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है, और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है, और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है, जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल।
1: आज जो है भारत में 170,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं, जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 182,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है, ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है, और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है, कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए। तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता, और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है, यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया, आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 106,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया, जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर, तमाम ऐसे प्रयास है जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड-19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से, ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है, ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है। लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी के जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है, वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है, वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं, जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड 19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड 19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, कोविड 19 पैंडेमिक पूरे दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलियंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो। जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है, तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब कोविड 19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से कोविड 19 के दौरान भारत ने न केवल

0: अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने दो स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है।
1: जी।
0: और यहाँ तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है, और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है, और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है, तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन्स जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। US हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयाँ पहुँचती हैं, जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है, तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज़्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है, और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है, और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का

0: सेवन कम रहें और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान, बीड़ी, मसाला, शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग, व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं। और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं और से क्या कहना चाहेंगे?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है। 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है। और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है। और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट You were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पर बात करेंगे, लेकिन सुनते हैं इससे पहले ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 8 जून संध्या 6:30 पर।
4: इस कार्यक्रम के पुनः प्रसारण को आप सुन सकेंगे 9 जून सुबह के 9 बजे।
3: कार्यक्रम में प्रस्तुति स्वर होगा संगीता शर्मा और सुनीता हासदा का।
4: लेखन और संकलन संगीता शर्मा और सुनीता हासदा का।
3: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे राजेश कुमार राय।
4: ये प्रस्तुति होगी आकाशवाणी चाईबासा की।
3: तो सुनना ना भूले आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से।
0: श्रोताओं, हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब हम बात करेंगे उस संस्था की गौरव गाथा को याद करेंगे जिसने 9 दशकों तक भारत के जनजीवन, संस्कृति, शिक्षा और मनोरंजन को अपनी आवाज़ दी। श्रोताओं, यह संस्था है आकाशवाणी। 90 वर्षों की यह यात्रा केवल एक प्रसारण सेवा की यात्रा नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास की कहानी है।

श्रोताओं, भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास लगभग एक शताब्दी पुराना है। वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। बाद में 1957 में से आकाशवाणी नाम मिला। आकाशवाणी अर्थात आकाश से आने वाली वाणी। जब संचार के साधन बहुत ही सीमित थे, तब रेडियो ही लोगों को दुनिया से जोड़ने की खिड़की था। समाचार, संगीत, नाटक, वार्ताएं और विशेष कार्यक्रम लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए। आकाशवाणी ने स्वतंत्रता आंदोलन के बाद राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसानों को खेती की नई तकनीकों की जानकारी मिली, विद्यार्थियों को शैक्षिक कार्यक्रमों से लाभ हुआ और समाज में जागरूकता फैलाने का काम हुआ। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में देश में स्वतंत्र भारत का उदय रेडियो के माध्यम से सुना। यह आकाशवाणी इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। भारत विविध संस्कृतियों का देश है। श्रोताओं, आकाशवाणी ने लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, लोक कथाओं और साहित्य को हर घर तक पहुंचाया। अनेक प्रसिद्ध कलाकारों को पहली पहचान आकाशवाणी के मंच से ही मिली। श्रोताओं के लिए यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति से जुड़ने का माध्यम भी था। समाचारों की बात हो तो और आकाशवाणी का नाम ना आए, ऐसा संभव ही नहीं। दशकों से यह देश की सबसे विश्वसनीय समाचार सेवाओं में से एक रही है। युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और राष्ट्रीय संकटों के समय आकाशवाणी ने लोगों तक सही और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाने का कार्य किया। मनोरंजन की दुनिया माने तो 1957 में शुरू हुई विविध भारतीय ने रेडियो मनोरंजन को एक नई पहचान दी। जयमाला, हवा महल, छाया गीत जैसे कार्यक्रमों ने तो श्रोताओं के दिलों में अपना विशेष स्थान बनाया। रेडियो पर बजने वाले गीत लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गए।

श्रोताओं, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में भी आकाशवाणी ने स्वयं को समय के अनुरूप ढाला है। FM चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से यह आज भी करोड़ों श्रोताओं तक पहुंच रही है। नई तकनीकी ने इसकी पहुंच को और भी व्यापक बनाया है, लेकिन इसकी मूल भावना है जन सेवा। आकाशवाणी ने हमेशा देश की विविधता में एकता को मजबूत किया है। विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों के कार्यक्रमों ने भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। आज भी जब देश के किसी कोने से कोई लोकगीत या सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित होता है तो वह पूरे भारत को जोड़ता है।

श्रोताओं, 90 वर्षों की यह यात्रा विश्वास, सेवा और समर्पण की यात्रा है। आकाशवाणी ने पीढ़ियों को जोड़ा, संस्कृतियों को सहेजा और देश की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाया। आज जब हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं, तो यह अवसर उसके अमूल्य योगदान को नमन करने का भी है। तो आइए हम कामना करें कि आने वाले वर्षों में भी आकाशवाणी इसी तरह भारत की आवाज़ बनकर जनसेवा करती रहे।

0: तो श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: मोर नाम मंगल राय को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे भक्तो कहाँ तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए है
6: नितुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुरा में ना आया यापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
7: अन्यान तुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा दोनों में बुरी बुरी ने बागिया तो कि दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तो मैं दूर रन गई यहाँ तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
8: अलिंग मुनि सुरेन पे आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिटा हुरेन का
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आएं आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं कार्यक्रम आपकी पसंद को लेकर मैं हूँ निशा। तो कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम आपकी पसंद में श्रोताओं हमें खत मिला है बड़ा बाम्बो सुपाईसाई से देवेंद्र ताती, प्रकाश ताती, कुमारी निशा ताती, राकेश ताती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, ठाकुर प्रसाद गुप्ता, सुशांक सिंह देव, सदर्शन प्रमाणिक, ईश्वर बानरा, ललित बाबू और देवेन बाबू का। खरसवां दलाई किला से लक्ष्मण सोय, मांगू सोय, गीता सोय और अनिता सोय का। इन सबों के फरमाइश पर आइए सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

जा बुरा करते हाथ, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर क्यों उठा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण शंकर महादेवन की आवाजों में फिल्म अकेले हम अकेले तुम का ये गीत। और अब कार्यक्रम आपकी पसंद में हमें अगला खत मिला है न्यू कॉलोनी टुंगरी से रश्मिता महतो, स्वाति महतो, विश्वजीत महतो, अभिजीत, आर्या, वीर, तेजस, प्रकाश जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, उर्मिला देवी वैष्णवी और रीना जायसवाल का। तुरीटोला चायबासा से खत लिखने वाले हैं मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, अर्पिता कुमारी लाड़ो, सुमित ठाकुर, दुल्की ठाकुर, भोला रजक और खुशी कुमारी। इन सबों के फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म कर्तव्य का ये गीत। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी कार्यक्रम रजनीगंधा, और रजनीगंधा कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म तेरी मेहरबानियां से, अनुराधा पौडवाल और सब्बीर कुमार का गाया, SH बिहारी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर। और इस गाने को सुनना चाहा है वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चायबासा से भोला राम मधुर, बड़ी बाजार चायबासा से विनोद कुमार पवन और मीना पवन, बठेना से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, और सारा गांव से सुजान वर्मा, सोहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 8 जून संध्या 6:30 पर।
1: इस कार्यक्रम के पुनः प्रसारण को आप सुन सकेंगे 9 जून सुबह के 9 बजे।
0: कार्यक्रम में प्रस्तुति स्वर होगा संगीता शर्मा और सुनीता हाजदा का।
1: लेखन और संकलन संगीता शर्मा और सुनीता हाजदा का।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे राजेश कुमार राय।
1: ये प्रस्तुति होगी आकाशवाणी चाईबासा की।
0: तो सुनना ना भूले आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से।
2: और इस अंतराल के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सबों का फिर से स्वागत है। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला खत ले रही हूँ खरसवां नारायणपुर से कैलाश बाबा का। खेत्रो मोहन साहू नायडू महतो प्रधान माटीसोय कुल्लू साहू नित साहू श्री मोतीलाल साहू और उनके परिवार के सभी सदस्य छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश और शीतल राजेश का। भाटापारा से सुहान जोशी लता राठौर पायल जोशी लोकेश जोशी। इन सबों के फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा का ये गीत फिल्म गुनाह से अलका याग्निक और बाबुल सुप्रिय की आवाज़ों में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना नवराज हंस और साथियों का गाया फिल्म बाटला हाउस का ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा था आमला टोला चायबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और सोनू, बड़ी बाजार चायबासा से मौजम बिहारी, समीमा खानम, जिम्मी बिट्टू, किरण रोशनी, मुस्कान परी और नबाहा। और अब कार्यक्रम रजनीगंधा के लिए हमें अगला खत मिला है दंत्रे।

रेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी का, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू का और मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी का। पोंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय महली, संजीव, बिरसा मुर्मू और कमलेश मुर्मू, इन सबों के फरमाइश पर आइए सुनते हैं योगेश का लिखा बापी लहरी के धुन पर कुमार सानू का गाया फिल्म गुदगुदी का ये गीत।

0: और अब श्रोताओं, इसी के साथ हमारा रजनीगंधा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
3: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि

0: भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मॉनसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दर्ज

0: ये उस दौर की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी। लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा, सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार। लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह के पहले चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
0: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
4: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रमाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूंगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 2400 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अब भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या ना करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है, और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है, हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द गलत तथ्य न जा सके इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
1: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुमित टंडन। आइए सुनते हैं उनके सफर की कुछ अनसुनी यादें।
5: As far as the news is concerned, the people who were in the great
6: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मनिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे, एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपनी स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे, एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
1: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की। सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
0: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुंचाया, चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां, लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
1: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
7: सबसे पहली चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज, लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी, तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा। पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूंगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात यह थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
0: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
1: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
8: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपनी साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
9: हर हंसी खाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
8: दो मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
10: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने।
11: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन, यहाँ पर 6 सदस्य टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
0: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले हम दर्द की भी रही है।
1: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़, जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे, तब आकाशवाणी ने वहां एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियां हर पीढ़ी तक पहुंचाई जा सकें। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
12: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरी से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए वहां इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जय जी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन तीन स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी, मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी, हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीख चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आइल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला दे के उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पे तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब एसएमएस को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पे बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास एसएमएस या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला वो फील्ड पे मिला, आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
1: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों के रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
0: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: आकाशवाणी एट 90 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ।
1: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के, सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
0: 60, 70 और 80 का दशक, ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के क्वालालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
2: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास याफ्ता रसूल को। याफ्ता रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ, जहां पे चौकर ने वहां पे अब्बास, अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी दाएं फ्लैंक में। और ये खेल खत्म, भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। और ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
1: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की

0: जिंदा रखा, वो काम किए। एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान है उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआत ही क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण से। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज जिस तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है, उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
1: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुँचाया ही नहीं बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिसने नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
2: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
3: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी, और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं मैंने भी उसको जिया है और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है, चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवर्स ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर जहां भारत ने 326 रन बनाए थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
2: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा, खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुँचाया।
1: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
4: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सिंह, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने एक कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट कॉमेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तम पुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर, और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूँ, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखते हैं।

0: था क्रिकेट ही।
1: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
2: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती है।
3: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल, घर का सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
2: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट्स और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
1: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसार

0: आकाशवाणी है।
1: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं गजलों की महफिल सज चुकी है, सुनते हैं छाया गांगुली और उस्ताद मोइन खां की आवाज़ों में ये गजल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे छाया गांगुली और उस्ताद मोइन खां की आवाज़ में ये गज़ल। और अब अगला गज़ल पेश है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

0: आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 8 जून संध्या 6:30 पर।
1: इस कार्यक्रम के पुनः प्रसारण को आप सुन सकेंगे 9 जून सुबह के 9 बजे।
0: कार्यक्रम में प्रस्तुति स्वर होगा संगीता शर्मा और सुनीता हांसदा का।
1: लेखन और संकलन संगीता शर्मा और सुनीता हांसदा का।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे राजेश कुमार राय।
1: ये प्रस्तुति होगी आकाशवाणी चाईबासा की।
0: तो सुनना ना भूले आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में गाए इस गज़ल के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का गज़लों का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं, हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग का पहला गीत हमने लिया है श्रोताओं, तलत महमूद का गाया।

श्रोताओं, अभी आपने सुना राजेंद्र कृष्ण की रचना सज्जाद हुसैन के धुन पर तलत महमूद का गाया फिल्म संग दिल का ये गीत। अगला गीत भी सुनते हैं श्रोताओं, तलत महमूद की ही आवाज़ में। फिल्म का नाम है एक गांव की कहानी।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे हैं हमारे कार्यक्रम सुरों के रंग का। और अब अगला सुर हमने लिया है लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है पेइंग गेस्ट, धुन SD बर्मन का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म दिले नादान का ये गीत। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं, सुनवाते हैं आपको शमशाद बेगम का गाया ये गीत, शकील बदायूनी का लिखा, नौशाद की धुन पर। फिल्म का नाम है दुलारी।

दोस्तों, अभी आपने सुना प्रेम धवन का लिखा ये गीत खेमचंद के संगीत में, फिल्म जिद्दी से लता मंगेशकर का गाया। और अब श्रोताओं, सुनवा रहे हैं आपको चलते चलते ये गीत।

फिल्म लाखों में एक, आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन के धुन पर लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया। इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारे सुरों के रंग का सफर यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और कुछ ही पलों में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए चलेंगे आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीति भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा

0: जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $9 अरब की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।